0: ORG वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360 omsorg असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
1: Yeah, it happens.
0: SORG वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360 omsorg असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
1: Yeah, it happens. कुसुदाक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर.

हम बहुत ही खास और स्पेशल बना रहे हैं। तो चलिए इन्हीं पलों को जरा और खास बनाते हुए एक और ट्रैक को मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

बात की जाए इट हैपेंस में एंटरटेनमेंट ग्लैमर और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स की। जी हाँ, यानी कि आज का पॉप कल्चर अपडेट। देखिए, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ट्रेंड वायरल हो रहा है, 10 ईयर्स चैलेंज। लोग 10 साल पुरानी तस्वीरें और आज की तस्वीरें साथ में शेयर कर रहे हैं। बॉलीवुड सितारों ने भी इसमें काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस हिस्से के बाद लोग और उनके फैंस जो हैं वो तो एक्स्ट्रा एक्टिव हो गए हैं और सोशल मीडिया पर 10 ईयर्स ओल्ड पिक्चर और आज की पिक्चर्स को मैच किया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग इसमें लिख रहे हैं कि भाई हम तो अभी भी पहले जैसा दिखते हैं, है ना। हाँ, तो ये ट्रेंड बड़ा भाई चल रहा है और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे इसको देखने को मिलते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि कई एक्टर्स की 10 साल पुरानी फोटोज देखकर लग रहा है कि वो तब ज्यादा बूढ़े लगते थे और अब ज्यादा यंग हो गए हैं। इसे कहते हैं रिवर्स एजिंग। और ये जो रिवर्स एजिंग है, मैं जिस एक्टर में सबसे ज्यादा देखती हूँ, अमित जी, अमिताभ बच्चन, मतलब अमिताभ बच्चन जंजीर वाले देख लीजिए, लगता था कि यार ये क्या ही बंदा है। फिर एक टाइम ऐसा आया जब अमित जी कर रहे थे अमर अकबर एंथोनी, आई गजब क्या पिक्चर, मतलब हेरा फेरी, है ना। उस वक्त लग रहा था कि यार अब फिर चेंज हो रहे हैं अमित जी। और फिर जब उन्होंने वो गाना किया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया, या फिर सिलसिला का गाना, जी हाँ सिलसिला में तो मतलब अमर जी का एक अलग ही लुक हो चुका था। एंड आज जब मैं उन्हें देखती हूँ केबीसी में हाय बोलते हुए, यार गजब मजा आ जाता है। तो रिवर्स एजिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल अमिताभ बच्चन जो मैंने अपने एज में देखा है, अमित जी हैं। तो भाई अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिवर्स एजिंग रहे तो भाई ढेर सारा पानी पीजिए, हमारा कहने का मतलब ये है, वर्कआउट कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, वरना स्किन जो है वो डल होती चली जाएगी, आप लेजी होते चले जाएंगे, फैट बढ़ता चला जाएगा और आप ओवर एज दिखने लगेंगे, ठीक है। तो बस अपने वक्त के साथ थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 FM।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

जय थापन्स एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ, आप अपने मॉर्निंग शो के साथ अपने मॉर्निंग वाले टाइम को खास बना रहे हैं आप आपके अपने रेडियो ब्रिस्पानी 1701 AM पर। सो अभी वक्त हो गया है गाड़ियों के हॉर्न्स और ऑफिस पहुंचने की जल्दी का। जी हाँ, तो अगर इस वक्त आप अपनी कार में हैं या बस में खड़े खड़े एक हाथ से हैंडल पकड़े हुए हैं तो सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा धीमे छोड़ दीजिए। ट्रैफिक में आगे वाली गाड़ी वाला अगर बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाए या कोई पीछे से बेवजह हॉर्न बजाए तो गुस्सा मत होइए, बस मुस्कुरा कर कहिए भाई को शायद जल्दी जाना है, ऐसे हमसे ज्यादा जल्दी है। यू नो, ट्रैफिक आपके हाथों में नहीं होता, लोगों का बिहेवियर आपके हाथों में नहीं होता, लेकिन आपका मूड आपके हाथों में होता है। तो बस अपने शीशे ऊपर कीजिए, एसी ऑन कीजिए और इट हैपेंस में अभी इस ट्रैक को जो मैं प्ले करने जा रही हूँ उसे फुल वॉल्यूम में सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्पानी पर। सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपके ब्रेकफास्ट शो को।

आज ना दोस्तों मैंने एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ी तो सोचा आज आपके साथ उसे बांटूं। जी हाँ, ये कहानी है साइचिरो होंडा नाम के एक लड़के की, जिसने एक छोटी सी गैरेज में काम करना शुरू किया था। उसने टोयोटा कंपनी को एक पिस्टन रिंग बेचने की कोशिश की, पर टोयोटा ने उसका डिजाइन रिजेक्ट कर दिया। उसकी वर्कशॉप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बमबारी में तबाह हो गई, फिर भूकंप आया और सब कुछ खत्म हो गया। इसकी जगह कोई आम इंसान होता तो शायद हार मान लेता, पर सोइचिरो ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर में पड़ी साइकिल में एक छोटा सा इंजन जोड़ा और दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बनाई, जिसे आज हम होंडा के नाम से जानते हैं। यू नो, जब भी जिंदगी में आपका कोई प्लान फेल हो, जब भी आपको रिजेक्शन मिले, तो समझ लीजिए कि ये अंत नहीं, ये सिर्फ एक रीरूट है या ये एक नई शुरुआत है। कठिनाइयां आती रहेंगी, आप बस चलते रहिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

दोस्तों, आज आप एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं इस मॉर्निंग के साथ। तो आज आपका दिन कैसा भी बीते, शायद आपको कोई बड़ी सक्सेस मिल जाए, या शायद एक छोटी सी गलती हो जाए आपसे, या शायद आपका प्लान अनसक्सेसफुल हो जाए। बस एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो आपके फेलियर से डिसाइड नहीं होती है। जिंदगी हर सुबह आपको एक खाली पेज देती है। कल क्या हुआ था उसे भूल जाइए, और आज आप क्या कर रहे हैं बस उसी को याद रखिए। अगर कोई प्लान आज काम ना करे तो मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और कहिए कि कोई बात नहीं, इस काम से भी मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, और आज ना सही कल ये काम और बेहतर होगा। और सुनते रहिए ठापंस सताक्षी के साथ, आपके अपनी रेडियो ब्रिस्वानी।

वेल दोस्तों, ये था आज एक और इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ साथ, लेकिन अब इस साथ को यहीं पर थामने का हो गया है वक्त। उम्मीद है आपकी सुबह फ्रेश हुई होगी और आपका मूड सेट हो गया होगा और अब आप अपने दिन का सामना करने के लिए पूरी तरह से हो गए होंगे तैयार। तो बस अब इस सफर से मेरा भी वक्त हो गया है विदा लेने का। अपना ख्याल रखिए, अपनी सुबह को जीते रहिए और रेडियो प्रस्वानी सुनते रहिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी ये चैनल आपको एंटरटेन करता रहेगा। मैं मिलती हूँ कल सुबह इट हैपेंस में एक बार फिर से। मस्त रहिए, जिंदगी को जीते रहिए। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे।

0: जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। हां तुसी बड़े होयो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसानी 101 एम ते चार छे संदेश शोलक दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना च वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असी गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालो नाल इन्हां गल्लां नूं असी पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा है। तुसी की कहना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिसानी 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी ते bisani@bisani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी ओ अपनाओ, पर साडा गल बात जरूर करो। फटाफट दे नाल अपना फोन चक लो, जुड़ना शुरू कर दो, अपनी फरमाइशा भेजो या करो दिल दियां गल्लां। जिवें भी जुड़ना है ओ जुड़ो ते नवे पुराने गीत मैं तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी। अज्ज इक बेहद खास जी गल करनी है तुहाडे नाल करूंगी, बातें लाई गीत सुनो।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इसे गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दी गलियां दी धुन प्रस्तुत की है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया, निशांत नागर ने इसनु तैयार किया। यह गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला राग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुणियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुणा दिंदी आ। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुणियो।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्टोनी 101.1 एम ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली जेड़ी गल हैगी है, वह है तवायफ गौहर जान दी। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी, यह कहा जाता है तो कहा जाता है कि कहानी कितने ना कि उसकी है। मनिया जाता है कि यह कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाने वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। यह गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नूं बयां करता है। इस औरत नूं तवायफ कहंदे हैगे लोग, सानू नहीं पता कहंदे हैगे ने, रिपोर्ट्स कहंदियां ने। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी, जो बनारस दी दाल मंडी विच रहंदी सी ते एक तवायफ सी। अजिहा मन्निया जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलों गुजरदे समय ना जदों लंघदे समय ना उन्होंने असलम नाम दा एक आदमी उन्होंने मिलिया सीगा। उत्थों ही तां कहानी शुरू हुई सी। दसदी हां उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच, पर पहला सुनो एक गीत।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: हनी ये तुम कहां ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द
1: क्वींसलैंड। ये तुम कहां ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हां जी तक पर फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसर ओवाने हम ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल सी पणे होयो गाने विच गिरमिटिया गीत भी कहते हैं गाने नू ना इसनू इस गाने नाल जुड़ी एक होर कहानी यह हैगी है कि एक गिरमिटिया गीत है जिसनू विदेश भेजे गए बंधुआ मजदूरां दे पलायन ते आधारित मनिया जाता है। इस तो इस विच ना कई लोगों का पलायन कट मजदूरी ते काम लब्बन दे लई होया सीगा। इस गीत नू उस दौर नाल भी जोड़िया गया हैगा। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान अपने संगीत प्रोग्रामा विच कजी बजाउंदे है सीगे ते अक्सर कहंदे सी कि उन्होंने इस नू बनारस विच अपने बचपन विच सुनिया सी। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी एक कजरी गाए हैगे ने ते अपनी किताब चंदन किवाड़ विच गौहर खान दी कहानी दा गौहर जान दी कहानी दा जिक्र भी किया है।

ऐन तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी देख फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तों 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन दे अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नूं अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी, जो कदे कलकत्ता तों रवाना हुंदे सीगे।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी वन सर वन एम ते जी अच्छे संदेश अलग दिराल से बने हुए हूँ। देखो कुछ चौड़ी गली बारे में तो इन्ना कुछ दसता हैगा है, तुसी देखियो जरूर एक बार गीत ते तुसी जेड़े घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्हां नूं कुछ पता होवे या फिर गूगल करो तो थानू पता लग जाना है कि यह गल्ला किनिया कुछ सच है क्या ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्ला है ने जुड़िया हुई जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए से। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच वी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दी सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह। इस दे तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर।

0: जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार ले लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 32737365. That's 32737365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: अनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कैसा फील कर रहे हैं आप आज, ये हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, आज दिन क्या है? वेल, अभी तो हफ्ते की शुरुआत हुई है और ट्यूसडे है आज, मतलब कल मंडे आएगा, एंड देन जाके कहीं फ्राइडे आएगा। बट आपको निराश नहीं होना है क्योंकि इंतजार करने पे तो कुछ भी मिल जाता है, तो फ्राइडे भी आ जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ आइए अब करते हैं शुरुआत प्रोग्राम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल के साथ, वही रिचुअल जो हमेशा हम प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में, शुरुआत में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। जी हाँ, तो सबसे पहले डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे। क्या बात, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ बिना देर किए शुरुआत होगी प्रोग्राम की एक बढ़िया से, मजेदार से और एकदम खतरनाक से गाने के साथ। अगर आपने मिर्जापुर देखी है फिल्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म, तो शायद आपको पता होगा मैं कौन से गाने के बारे में बात कर रही हूं। ये गाना है दो नंबरी। मतलब क्या है गाने का नाम और क्यों है गाने का ये नाम, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप इस गाने को सुनोगे। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है, इस गाने को सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा जोश जो है वो आने वाला है और आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया हमारे कदमों में है। जी हाँ, ऐसी फीलिंग आ सकती है आपको इस गाने के साथ। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, वेल आपको पता चल जाएगा। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: आप कह रहे हो इंडिया शर्मा, मतलब हमें लगी रहा था कि तुमको एक खतरनाक सा गाना प्ले करने वाली हूँ, पर तुमने तो मतलब धूम ही मचा दी। वेल, मुझे पता है क्योंकि मैंने धूम मचा दी है इन दो गानों के साथ। ये गाने दोनों ही नई मूवीज के हैं और दोनों ही मूवीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा और डिटेल में। लेकिन पहले डिस्कस होगा उस चीज के बारे में जो बेसिकली हमारे प्लान्स को पूरी तरह से अफेक्ट करती है, और हमारे प्लान्स अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं हो तो उनमें पानी फिर जाता है। एंड व्हेन आई से पानी फिर जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेन वाला पानी, यानी कि बारिश वाला पानी। सो ऑफकोर्स आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ बारिश के बारे में, मौसम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 24.9 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 22.7 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी के साथ रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आप देख पाएंगे। जी हाँ, और उसी के साथ एयर क्वालिटी भी है एकदम फेयर। जी हाँ, ये तो हुई आज की बात। और 20% चांसेस भी है बारिश होने के, लेकिन वो कब के लिए है वो एक डाइसी सिचुएशन है। और बेसिकली 20% बारिश मतलब 20% इलाके में बारिश हो सकती है ब्रिस्बेन के इलाके में। जी हाँ, वेडनेसडे की यानी कि कल की बात की जाए एंड परसों की यानी कि थर्सडे की, तो वेडनेसडे को 26 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ बारिश बदरा सब आने वाले हैं। 60% चांसेस यानी 60% चांसेस मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वहीं अगर थर्सडे की बात की जाए तो 70% चांसेस 1-5 mm बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है विद 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। तो जो आपने तापमान में उछावट देखी थी, उछाल देखा था, वो अब फिर से गिर गया है और अगले दो दिन वो गिरा ही रहने वाला है। जी हाँ, और अगले दो दिन बारिश भी होने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, घर से बिना छातों के ना निकलिएगा, और जो नेसेसिटीज होती हैं आपकी बारिश में उनके बिना ना निकलिएगा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कल एंड परसों। जी हाँ, इसी के साथ अब आपको बता दिया है हमने हाल, तो जरा हम भी चलते हैं अपनी चाल और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला गाना आपको सुनाते हैं, आई डोंट नो बट मोहब्बतें पिक्चर के गाने मेरे दिमाग में चल रहे थे खासकर।
1: एक लड़की थी दीवानी सी।
0: बिल्कुल, मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है।
1: एक लड़के पे वो मरती थी,

0: गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है।
1: खुली

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम इवनिंग वाइब और भी ज्यादा खास है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोग्राम। रीजन बींग, इसमें आप अपने फेवरेट गाने फरमाइश कर सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अपने पसंदीदा गानों के साथ और उन्हीं गानों के साथ जो आप किसी को डेडिकेट कर उन्हें स्पेशल फील करवाना चाहते हो, लेकर आ जाइए वाया कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप। जी हाँ, नंबर मैं आपको देने वाली हूँ। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से किसी को भी स्लीप वॉकिंग की आदत है या नहीं। जी हाँ, मतलब आप लोग बोलोगे कि निव्या आउट ऑफ नोवेयर लाइक कहाँ से तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ गया कि स्लीप वॉकिंग के बारे में बात की जाए। वेल, इसके बारे में मुझे ख्याल इसलिए आया है क्योंकि मैंने आज स्लीप वॉक किया है एंड आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट। नेवर इन माई लाइफ हैव आई एवर डन इट बिफोर। जी हाँ, मतलब स्लीप वॉकिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था। मैं बहुत ही अच्छे से सोने वाले इंसानों में से थी, लेकिन आज मैंने किया है। एंड गेस वॉट, अगर मैंने अकेले किया होता तो मुझे प्रूफ पता नहीं चलता, लेकिन इसका प्रूफ मेरी मम्मी जी ने मुझे दिया है क्योंकि अपेरेंटली मैं स्लीप वॉक करते हुए अपनी मम्मी के पास गई एंड इट वॉजंट एग्जैक्टली स्लीप वॉक बिकॉज मेरी मम्मी के हिसाब से मैं जागी हुई थी। बट गेस व्हाट, मुझे इस सारे के सारे इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं उनके रूम में जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ सुबह के 3 बजे और उनसे कुछ कुछ बात करती हूँ, उन्हें जगाने की कोशिश करती हूँ और फिर आके फिर से सो जाती हूँ। आप लोग बोलोगे कि नीवेश शर्मा, मतलब हमें लगता तो था कि कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग का ऊपर वाला माला कुछ तो ढीला हो गया है, लेकिन अब ये काम भी चालू कर दिया। वेल, आपको पता है, इवन आई थिंक दैट कि ये काम भी चालू कर दिया नीव्या। सो या, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कभी किसी ने स्लीप वॉक किया है या नहीं किया है। नाउ आई डोंट नो इफ इट वॉज एग्जैक्टली स्लीप वॉकिंग और मैं थोड़ी जागी हुई थी, थोड़ी नींद में थी, और वॉट एग्जैक्टली वॉज आई ट्राइंग टू डू, बिकॉज मैं आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। देर इज नो वे आई एम गोना वेक अप एट 3 एंड उसके बाद मैं योगा करने के लिए जा रही हूँगी। देर इज नो वे आई एम गोना डू इट बिकॉज आई एम अ लेजी पर्सन। सो वॉट एग्जैक्टली वॉज आई डूइंग, आई डोंट नो। बट चलिए, एक चीज तो अच्छी है कि मैं गई अपनी मम्मी के कमरे में और वहां पर मैं अपनी मम्मी से बात करने लग गई, बिकॉज इफ आई वुड हैव डन समथिंग एल्स, पता नहीं मैं क्या ही करने वाली थी। जी हाँ, सो आई एम क्वाइट यू नो इंट्रीग्ड बाय द थॉट कि क्या हुआ, वो क्यों हुआ। एंड या, आपकी राय जो है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, जरूर मुझे बताइए अगर आपके आजू बाजू कोई स्लीप वॉक करता है या किसी ने कुछ ऐसा ही किया हो, और जरूर मुझे बताइएगा इसका कोई इलाज है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ डिजीज और एनीथिंग, बट मतलब कुछ कुछ करके इसको ठीक किया जा सकता है क्या, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग टू मी। So yeah, I really want to know your thoughts. Jiha, and yeah, it's funny. So you are allowed to laugh. Jiha, ek aur gana aap sab ke liye, meri taraf se.

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
3: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अ टन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों को रूबिक क्यूब खेलना बहुत ज्यादा पसंद है? मतलब ये एक ऐसी चीज है लो, हर किसी के घर में मिल जाएगी। बच्चों को इसे सॉल्व करने के लिए कहा जाता है एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस फॉर योर माइंड, ऐसा भी कहा जाता है। इट्स अ गेम जो कि इसका एक चीट कोड जान जाएं उनके लिए बहुत ही आसान है। जिन्हें नहीं पता है वो करते रहते हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। जी हाँ, तो ये जो रूबिक क्यूब का जो वर्ल्ड है वो अपने आप में एक वर्ल्ड है। जी हाँ, और इसी वर्ल्ड में एक छोटी सी नन्ही सी लड़की ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, and I have to talk about it because she is a girl and she is just 6 and she has done it. ऑल बाय हरसेल्फ। जी हाँ, सो चाइना की एक 6 साल की लड़की ने, छोटी सी लड़की ने रूबिक क्यूब वर्ल्ड को लिटरली एकदम अर्थक्वेक उसमें ला दिया है बाय ब्रेकिंग रिकॉर्ड ऑफ 3x3x3। जी हाँ, और ये रिकॉर्ड जो है उन्होंने 2 बार तोड़ा है, मतलब एक बार उन्होंने तोड़ा, फिर अपना जो है उन्होंने बनाया, उसके बाद उन्होंने फिर से तोड़ दिया। जी हाँ, इस लड़की का नाम है लियान युनजी। जी हाँ, और इनकी एस्टॉनिशिंग एवरेज सॉल्व करने की जो टाइमिंग है रूबिक क्यूब को, वो है 4.27 सेकंड्स। मतलब 4.27 सेकंड्स में वो पूरा का पूरा रूबिक क्यूब जो है उसको सॉल्व कर देती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन का सर्टिफिकेट भी उन्हें मिला है, मतलब उनको जो सर्टिफाइड जो कंपटीशन है वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन से, उन्होंने उन्हें बनाया है नंबर 1। जी हाँ, आपको बता दूं कि 3 घंटे हर दिन जो है ये छोटी सी बच्ची इस चीज की प्रैक्टिस करती है। और एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है कि ये सिर्फ एक तरीका या 2 तरीके या 3 तरीके इस छोटी सी नन्ही सी लड़की के पास नहीं है रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के, बल्कि 1300 जो है एल्गोरिदम्स हैं इस लड़की के पास उसे सॉल्व करने के, मतलब तरीके हैं इसके पास इसे सॉल्व करने के। कैन यू इमेजिन, मतलब मुझे तो 10 मिनट उसे सोचने में ही लग जाते कि अच्छा ये सारे ऐसे हैं, ये सारे ऐसे हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। और आई एम नॉट सेइंग कि मैं कभी उसको करने में कामयाब हो पाई हूं, मतलब ऑफ कोर्स मेरे लिसनर्स में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि रूबिक क्यूब को बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से जो है वो सॉल्व कर लेते होंगे, बट देर आर नॉट मेनी पीपल जो कि इतनी जल्दी कर सके। एंड 4.27 सेकंड, दैट इज लाइक आई डोंट इवन नो कि 4.27 सेकंड में तो मुझे 2 सांसें लेने में ही वक्त लग जाता है। सो वो बच्ची ने 4.27 सेकंड्स में रूबिक क्यूब को सॉल्व भी कर लिया और अपना रिकॉर्ड भी बना लिया। जी हाँ, आप सोचिए, मतलब मैं सोच के ही हैरान हूं कि आजकल के बच्चे कितने ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आजकल के बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, एंड आई गेस दैट इज व्हाट शी इज। जी हाँ, लियान युनजी, लिटरली यू आर अ मास्टर, एंड एट द एज ऑफ जस्ट 6, मतलब सिर्फ 6 साल की उम्र में ये कारनामा कर दिखाना, लाइक इट्स ह्यूज। और वो भी 1300 से ज्यादा मतलब तरीके हैं सॉल्व करने के, दैट इज समथिंग एल्स। मतलब ठीक है, आपने रिकॉर्ड बना दिया, सब कुछ कर दिया, वो सब कर दिया, लेकिन एक चीज जो और भी ज्यादा खतरनाक है वो है कि 1300 तरीके हैं इस लड़की के पास उस क्यूब को सॉल्व करने के। I don't know what to say to that, but yeah, big round of applause for that girl. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे के साथ इस दुनिया में अजूबों की कमी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ कहूंगी कि अजूबे की बात यहाँ नहीं है, एग्जैक्टली बात है अपने आप से प्यार करने की। और जब अपने आप से प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि आप हर चीज इस दुनिया में डिजर्व करते हो, महंगी हो या सस्ती हो, सब कुछ, और फिर उसके लिए आपको कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए, अगर आपको खुद से प्यार है तो आप वो सब करोगे जो आपको लगता है आप डिजर्व करते हो। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा इतना बड़ा मोनोलॉग अगर बोल ही दिया है तो आगे की बात भी बता दो। सो ये एक बड़ी ही फनी और दिलचस्प कहानी है जो कि इंटरनेट यानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक 75 यानी कि 75 इयर्स की जो लेडी हैं, उन्होंने चाइना की ये लेडी हैं बेसिकली, और उन्होंने अपेरेंटली 40,000 नहीं 40 लाख

यानी कि 4 मिलियन युआन के करीब जो है वो अपने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स और स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट और बेसिकली इन सारे ट्रीटमेंट्स पर खर्चा कर दिया। जी आप लोग बोलोगे हैं तो इसमें गलत बात क्या है? वेल, इसमें गलत बात कुछ नहीं है, लेकिन ये बात तब सामने आई जब उसकी बेटी को, जी हाँ वो जो लेडी है उनकी बेटी को इन सारे ट्रीटमेंट्स की रिसीट उन्हें मिली उनके घर पे। उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया गया था, कैसे लिप टैटू पैकेजेस थे, प्रोसीजर्स थे इंक्लूडिंग यू नो स्किन टाइटनिंग, थ्रेड लिप्स और न्यूमरस ट्रीटमेंट्स बेसिकली जो सारे उस लेडी ने करवाए। और वो सारे कराने के जो पैसे थे उनके पास, वो उन्होंने अपना घर बेचा हुआ था, उससे जो उनके पास सेविंग्स पड़ी हुई थी उससे उन्होंने सारे पैसे जो है वो खर्चे अपने इन स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए। आप लोग बोलोगे कि ठीक है, इसमें क्या बुराई है, मतलब हर एक इंसान की अपनी ख्वाहिशें होती हैं, ठीक है, घर तो मतलब चार दीवारों का बना हुआ है, अपने आप पर जो किया वही तो आपने रियल में जो है वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की। घर इज नॉट इन्वेस्टमेंट, अपने आप पर खर्चा हुआ पैसा इज इन्वेस्टमेंट। चलिए ठीक है, हम वैसे भी सोच सकते हैं बिकॉज इट्स इस चीज के, इस कहानी के दो पहलू हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि हाँ वो सब कुछ डिजर्व करती थी एंड दैट्स व्हाई शी डिड इट। कुछ लोगों को लगेगा कि इतना भी क्या था स्किन ट्रीटमेंट्स और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए पगलाना कि आपने घर बेच के जितने भी पैसे थे अपनी सेविंग्स जो है वो भी खर्चा कर दिया। अच्छा, फनी थिंग ये है कि घर बेच के जो पैसे थे वो तो उन्होंने खर्चे किए ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज्वेलरी भी बेच दी थी इस चक्कर में कि उन्हें लग रहा था कि अब मुझे जवान होना है, 75 साल की उम्र में मुझे जवान होना है और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगी, जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं मार्केट में अवेलेबल वो सब करूंगी। जी हाँ, उनकी बेटी ने बाद में डिस्कवर की वो बिलिंग जिसमें रिकॉर्ड जो है वो दिखा रहा था ह्यूज एक्सपेंसिव एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रिपोर्टेड 5.6 लाख लिप टैटू पैकेज एंड 42 लाख प्रोसीजर दैट यू पेड बट फॉर व्हाट रिपोर्टेडली नेवर रिसीव्ड। अच्छा, बहुत सारी चीजों के पैसे तो वो दे ही चुकी थी, लेकिन बहुत सारी चीजों के पैसे उन्होंने ऑलरेडी दे दिए थे लेकिन वो ले ही नहीं पाए। जी हाँ, और फिर उसके बाद जो है जब वो यहां पर उन्हें नहीं दिखी तो उसके बाद उनकी बेटी को ये सारे ट्रीटमेंट्स के जो है वो बिल्स मिले और जो सेविंग्स उनकी मम्मी थी वो तो उनको नहीं मिली। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या बात हुई, ठीक है अच्छा किया और अपने ऊपर स्पेंड किया, बच्चों के लिए पैसे रख के जाने में क्या भलाई है ना, बच्चे अपने लिए कमा लेंगे, बात ये भी सही है। बट द थिंग इज दिस इज सो फनी कि 75 में वो लेडी ने सोचा कि यार बच्चों के लिए पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, सारी उम्र उनके लिए किया है, अब अपने ऊपर करूंगी। जी हाँ, लिप टैटू से लेकर थ्रेड लिफ्टिंग से लेकर स्किन टाइटनिंग से लेकर बोटॉक्स से लेकर फिलर से लेकर सब कुछ उस लेडी ने करा लिया। I was like, yeah, that's a great way to pamper yourself. Yeah. अब आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या हमें naturally जो है वो age जो है वो होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक है अगर किसी ने कराया तो उन्होंने खुद के लिए कराया, किसी और के पैसे थोड़ी खर्चे हैं, खुद के पैसे खर्चे हैं। ऐसे में क्या आपकी राय ये है या वो है जो मैंने पहले कही, जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि इस इंसिडेंट ने, इस कहानी ने इंटरनेट पर बहुत ज्यादा जो है वो डिबेट छेड़ दिया। कुछ लोग कह रहे हैं इतना क्या पगलाना, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वाह क्या तरीका है खुद को पैम्पर करने का, काश सब यही करते हैं। जी हाँ, सो आप मुझे बताइए आप कौन से वाले ग्रुप में हैं। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: to stop renting and thinking about owning one. Or maybe an investor looking to invest. Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
12: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
13: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
12: अच्छा, वो क्या?
13: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
12: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
13: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
14: सांसों की माला पे सिमरूं मैं.
15: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए. म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम.
16: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना.
15: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co. स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009. प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेस फूड्स. कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और सोशल मीडिया चलाते चलाते मेरे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प मीम आता है. उस पर एक डक बनी होती है जिसने सनग्लासेस पहने होते हैं और उस पर लिखा हुआ था कि आई एडमायर पीपल हु इन 30 मिनट्स get up, have breakfast and shower. I need 30 minutes just to figure out where I am and who I am. And I was like, yeah, that's true. That's me. And there's so many people. जी हाँ. But there are people जो कि एकदम से उठ के जल्दी से सब कुछ कर लेते हैं और जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होकर जल्दी से पहुंच भी जाते हैं और एकदम मतलब वो एकदम अफलातून है. मतलब इतने ज्यादा तेज लोग कैसे हो सकते हैं. मतलब बिना इतने तेज आई एम टॉकिंग अबाउट फास्ट. आई एम नॉट सेइंग दे आर क्लेवर. जी हाँ. एंड आई वाज लाइक या दैट्स ट्रू. सो आप मुझे बताइए क्या आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही तेज हैं, जो आपको लगता है कि ओ कितना लेट उठते हैं लेकिन फिर भी वो सबसे पहले जल्दी से उठ के नहा धो के एकदम रेडी होके एकदम ऑफिस जल्दी पहुंच जाते हैं. मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं. जी हाँ, मुझे एकदम से जॉली LLB का डायलॉग याद आ गया जो कि अरशद वारसी बड़े ही अच्छे से बोलते, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं. जी हाँ. सो आई एम लाइक दिस कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं जो एकदम से उठ के मतलब सब कुछ कर लेते हैं. भाई सच में मैं और देर आर मेनी पीपल एंड आई नो सो मेनी पीपल जो उठते हैं और जिनको ये देखने में पहचानने में ही आधा घंटा लग जाता है कि वो इस प्लैनेट से ही है ना. लाइक आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल कि मैं धरती से ही हूं ना, मैं कहीं किसी और प्लैनेट से नहीं हूं. क्या चल रहा है मेरे आजू बाजू. या तो आई एम ऑल्सो लाइक दोज पीपल. आप मुझे बताइए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से नहीं, ये गाना है एक फरमाइशी गीत, एक गजल जो कि बहुत ही खूबसूरत है. गाने का नाम है खामोश लब हैं झुकी हैं पलके क्या बात है. और इसकी फरमाइश की है हमारी बहुत ही प्यारी लिस्नर अमला जी ने. थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए. लाइक आई एम टेलिंग यू बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इन ऑल द रियल सेंस. ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए. एंड थैंक यू सो मच अमला जी हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहने के लिए. और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गीत.

जी दोस्तों, मैं डालू ताल पे भंगड़ा वो तो आप बाद में डालिएगा, लेकिन पहले अब जरा चलते हैं, थोड़ा सा सीरियस माहौल चल रहा है दुनिया में उसकी तरफ भी रुख करते हैं। ऑल्दो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सीरियस चीजों से दूर रखें, क्योंकि इस दुनिया में वैसे ही काफी ज्यादा सैडनेस है, काफी सीरियसनेस है और बहुत ज्यादा गड़बड़ भी हो रही है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप इस चीज से थोड़े से अनछुए रहो, एटलीस्ट हमारे प्रोग्राम के टाइम पे, बट फिर भी हमें आपको थोड़ा सा अपडेटेड रखना तो जरूरी है। तो आइए सबसे पहले अब जरा बात कर लेते हैं खबरों के बारे में, खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है, वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं दुनिया भर के। वी आर गना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। जी हाँ, तो सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने पाकिस्तान को शक्तिशाली देश बताते हुए कहा। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोमवार को तेहरान में मुलाकात की। जी हाँ, बीबीसी उर्दू के अनुसार इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IARNA के मुताबिक राष्ट्रपति पजिश्कियान ने ईरान और पाकिस्तान को क्षेत्र के दो शक्तिशाली देश कहा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पास बड़ी मानव क्षमता के साथ साथ पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद है। पजिश्कियान ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लगातार हुई बैठकों से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में अमेरिका के बढ़ते हस्तक्षेप के बावजूद मुस्लिम देशों के बीच संबंध आगे बढ़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि पजिश्कियान पिए हुए हैं क्या, मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हूं यहां पे, मैं ये कह रही हूं कि पाकिस्तान तो हमेशा यूएसए की उंगली पकड़कर यहां वहां जाता रहता है, घूमता रहता है, ट्वर्ल करता रहता है, सारे के सारे काम करता रहता है और गंदे काम भी करता रहता है, माइंड यू। सो ऐसे में ईरान को कहां से लग रहा है कि अच्छा अब मुझे समझ आ गया कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, बिकॉज मक्का समझौता हुआ था अभी कुछ वक्त पहले सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में, बट टर्न्स आउट कि वहां पर या हूतीज जो है वो सऊदी अरेबिया पे धड़ाम करके धड़ाधड़ करके हमले कर रहे हैं, पर पाकिस्तान उन्हें बचाने वहां नहीं गया। और वो कह रहा है कि मक्का समझौता में ये वाला समझौता नहीं था, मतलब ये वाली लड़ाई नहीं थी, आगे कोई और लड़ाई होगी तो हम सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब दिस इज सो फनी, दिस इज सो, यू नो व्हाट आई फील फॉर सऊदी अरेबिया राइट नाउ, कि आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज वाई पाकिस्तान, लाइक आई मीन एनी अदर कंट्री वुड हैव डन एनीथिंग बट पाकिस्तान, और यहां पर ये ईरान के साथ मिलकर पूरी की पूरी जो है वो गर्म जोशी के साथ ये कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, हम तो सबके साथ हैं, हम अब, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि हमें लड़ाई को बढ़ावा देना चाहिए, बट दिस इज सो फनी, इट हैज बिकम अ फिल्म, मतलब ये ऑस्कर में जानी चाहिए लिटरली। मतलब इतना कैसे डबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, वहां सऊदी अरेबिया बेचारा खुद ही अपनी पतलून बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि अपेरेंटली उसने समझौता किया तो है लेकिन ऐसे दो देशों के साथ किया है जो कि है तो बहुत ही हिपोक्रेसी से भरे हुए। मतलब कह रहे हैं कि अगली लड़ाई जो भी होगी जिसके साथ उसमें हम साथ देने आएंगे, ये वाली लड़ाई शामिल नहीं थी उस समझौते में। लाइक आर यू किडिंग मी ओ व्हाट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू सऊदी अरेबिया, बट डेफिनेटली डेफिनेटली सबसे बड़ा जो पीठ में छुरा घोंपा गया है वो पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से घोंपा गया है यहां पर, क्योंकि हूतीज लिटरली सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को दिन प्रतिदिन ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दो देश जो उनके एलाइज हैं, ऐसा कहा गया था एक पे हमला दोनों पे हमला माना जाएगा, तीनों पर, बट यहां पर टर्न्स आउट कि ऐसा है ही नहीं, मतलब सब अपनी अपनी बातें कर लेते हैं पर काम कोई नहीं आता। इसलिए कहते हैं भाई अपने काम खुद ही कीजिए, अपनी रक्षा करने का संसाधन भी खुद ही रखिए, क्योंकि देयर इज नो वे एनीवन इज गोना हेल्प यू जब कोई भी गलत वक्त आएगा। जी हाँ, एंड दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, तुर्की एंड पाकिस्तान इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट मक्का समझौता, टर्न्स आउट इट्स अ फनी समझौता। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। जी हाँ, हूती हमलों के बीच सऊदी अरेबिया की मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन। जी हाँ, कोई आगे नहीं आ रहा था लेकिन ब्रिटेन आगे आया है, ऐसा कहा जा रहा है। ब्रिटेन सऊदी अरब को यमन के हूतियों के हमले के मद्देनजर डिफेंसिव एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की मदद देगा। प्रधानमंत्री NDBurnham ने कहा कि सऊदी अरब की ओर से सैन्य सहायता के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। डिफेंसिव एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का मतलब है कि एक सैन्य विमान हवा में उड़ते हुए दूसरे सैन्य विमान को ईंधन देता है ताकि वह लंबे समय तक हवा में रह सके, उसे बार बार एयरबेस लौटकर ईंधन भरने की जरूरत ना पड़े। माना जा रहा है कि यह मदद आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो सकती है। इसके तहत ब्रिटेन का एक वाइजर विमान तैनात किया जाएगा जो साइप्रस स्थित RF क्रोटरी से ऑपरेट करेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटिंग और विदेश मंत्री एड मिलिम्बेड के सलाह के बाद सऊदी अरब के अनुरोध को स्वीकार किया है। सरकार के अधिकारियों ने कहा कि यह मदद सीमित समय के लिए होगी और शुरुआत में कुछ हफ्तों तक इसके जारी रहने की संभावना है। गौरतलब है कि यमन में हूती विद्रोही वहां की मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ गृह युद्ध में शामिल है। सऊदी अरब इस सरकार का समर्थन करता है। हाल के दिनों में यमन के हूतियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद को निशाना बनाया था। इसके अलावा उन्होंने लाल सागर के तट पर स्थित ऊर्जा ठिकानों को भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया। तो देखिए, आप खुद ही देखिए कि पाकिस्तान और तुर्की के अलावा बाकी सब साथ दे रहे हैं, बस वही नहीं दे रहे हैं। सो या आई फील फॉर सऊदी अरेबिया राइट नाउ। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ ईरान एयरलाइंस पर लगे सैंक्शंस। जी हाँ, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ईरानी एयरलाइंस जो है, जो भी कंट्री ईरानी एयरलाइंस को अपने यहाँ आने देगी वो उस पर सैंक्शंस लग सकते हैं। जी हाँ, सो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेंसेट ने घोषणा की है कि 23 सितंबर से दुनिया भर में ईरानी एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद तुर्की, इराक और जॉर्जिया ने ईरानी एयरलाइंस को अपने अपने देश में प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की है। AAFP की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के दो अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की घोषणा के बाद इराक ईरानी एयरलाइंस की उड़ानों को निलंबित करेगा। इसके बाद जॉर्जिया ने भी ईरानी एयरलाइंस के अपने क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले शनिवार को ईरानी एयरलाइन महान एयर ने घोषणा की थी कि तुर्की सरकार ने अनुरोध पर उसने तुर्की के लिए अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। कंपनी ने बताया था कि तुर्की की ओर से उसे उड़ाने रोकने के लिए कहा गया था। गौरतलब है कि करीब दो सप्ताह पहले, यानी कि दो हफ्ते पहले, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 27 ईरानी एयरलाइंस को अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल किया था। इसके बाद अब ईरान की विमान कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। सो ऐसे में होगा क्या आगे चलकर हमें नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ईरान की मुश्किलात जो है वो बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ ईरान की मुश्किलात नहीं बढ़ रही है, यहां पर हम आपको यह भी क्लियरली बता दें, क्योंकि मुश्किलात पूरी दुनिया की बढ़ रही है, खासकर उन कंट्रीज की जहां का ऑयल गैस ट्रेड बाब अल मंडब या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, क्योंकि वहां से सब कुछ गड़बड़ हो गई। और अगर वहां से नहीं भी होता है तो भी महंगाई जो इसकी वजह से बढ़ रही है वो हमारी सोच से परे है, और वो जितनी बढ़ सकती है वो हम सोच भी नहीं सकते। जी हां, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। 11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: यार सागर में कुछ दम नहीं है बिल्कुल।

0: मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ, दुनिया में बहुत बड़े बड़े अजूबे हैं, लेकिन डेफिनेटली उनसे कम ही होगा कोई जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो इसके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपने अजीबो गरीब लंगर के लिए फेमस है। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट लंगर मींस, आई एम गोना टेल यू। लंगर मींस जो आप मंदिरों में या गुरुद्वारास में जो खाना खाते हो, जो आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, उसे भंडारा कहा जाता है, उसे लंगर कहा जाता है। और वैसे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर और गुरुद्वारास के अलावा भी अपने घरों के बाहर या किसी जगह पर ऐसे भंडारे या ऐसे लंगर जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिकली ये लोगों को खाना देने के लिए होता है, या फिर जो भी चीज का लंगर आप करना चाहे, बेसिकली खाने का ही होता है हमेशा और भंडारा। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति जो है वो फेमस हो रहा है दुनिया में, क्योंकि वो पहले पेट्रोल का लंगर कर रहा था। जी हाँ, उसने कुछ वक्त पहले पेट्रोल का लंगर किया था, यानी कि पेट्रोल का भंडारा, यानी कि पेट्रोल की चैरिटी नहीं बोल सकते हम एग्जैक्टली, लेकिन वो लोगों को बुला रहा था और वो कह रहा था कि अगर आप 3 बार माता दी बोलेंगे तो आपको मैं फ्री पेट्रोल दूंगा। जी हाँ, और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने इस पेट्रोल को लिया उस इंसान से। जब लोगों ने पूछा कि आप खाने का लंगर कर सकते थे, किसी और चीज का कर सकते थे, व्हाई पेट्रोल, तो उसने कहा कि यू नो व्हाट, हमारी कंट्री में इस वक्त पेट्रोल की काफी कमी हो रही है, तो मैंने सोचा कि खाने की कमी नहीं है, पेट्रोल की कमी है, तो पेट्रोल का भंडारा जो है वो किया जाए। एंड दैट्स व्हाई आई डिड। लेकिन अब जो है वो फिर से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति ने अब आईफोन का लंगर शुरू किया है। जी आई डोंट नो, मतलब मैं बताते बताते ही हंसी में लोटपोट हो गई, क्योंकि आई मीन आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक। बट डेफिनेटली अजूबे हैं इस दुनिया में. और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अजूबाज लाइक यू नो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल, मचू पिचू. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल. क्योंकि पीपल का जो दिमाग है, लोगों का जो दिमाग है, आप कभी पढ़ नहीं सकते. वो ऐसे अनप्रडिक्टेबल होते हैं कि आप क्या ही कहोगे. सो इस बार ये बंदा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अपेरेंटली इसने ऑर्गेनाइज करना था एक भंडारा, जी हाँ, जो कि आईफोन का था. मतलब लोगों को उसमें खाना नहीं मिलता, पेट्रोल नहीं मिलता, उसमें इस बार मिलता आईफोन. जी हाँ, आप लोग बोलोगे हैं निव्या शर्मा, फिर तो तुम हमें एड्रेस दो, हम भी आ जाते हैं सर आईफोन लेने के लिए, फायदा ही हो जाएगा. जी हाँ, मतलब ऐसा होने वाला था. लेकिन जब गवर्नमेंट ने सुना कि ऐसा बंदा ये ऐसी स्कीम बना रहा है, तो उनको लगा कि ये बंदा तो पागल कर देगा दुनिया को, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वहां पे अफरा तफरी मच जाएगी. सो उसने, गवर्नमेंट ने उस बंदे को बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हारा ये लंगर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं. नाउ जो उसके फॉलोवर्स हैं, दे आर लाइक, ओ हमारे तो ऐसा नहीं चलेगा, हमको तो ये लंगर चाहिए था, हमको आईफोन चाहिए था. आप लोग बोलोगे कहां से आते हैं ये लोग. वेल दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, कहां से आते हैं. सो अपेरेंटली ये बंदा जो है वो क्रिप्टो करेंसी और ऐसी बिटकॉइन करेंसी से अमीर हुआ है, और उसे लगता है कि वो सारी की सारी चीजें जो है वो ओ करता है माता रानी को. जी हाँ, और ऐसे में वो सब लोगों को कहते हैं कि जिस भी इंसान को मेरी कोई चीज चाहिए, मतलब पेट्रोल चाहिए मेरे भंडारे से, मेरे लंगर से, या आईफोन चाहिए, या जो भी चाहिए, जिस भी चीज का मैं लंगर करता हूं, उसे जय माता दी बोलना है, और जय माता दी बोलते ही आपको वो चीज जो है वो मिल जाएगी. मैं कहूंगी कि डेफिनेटली भक्ति तो बहुत एकदम सुप्रीम लेवल की है यहां पर, और डेफिनेटली लोग भी सुप्रीम हैं क्योंकि वो जा रहे हैं ऐसी जगहों पर. जी हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ वक्त हो गया है अब हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। तो आई होप आप उसके लिए रेडी हो एंड आई होप आपके पास कोई गाना भी है फरमाइश करने के लिए, इस सेगमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए। मैंने वही जो आप सोच रहे हो कि आप लोगों के पास कोई ऐसा गाना है जो पुराना है और जो आप फरमाइश करना चाहते हो, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। जी हाँ, परफेक्ट टाइम। इस सेगमेंट में हम पुराने गाने ही प्ले करते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको वो किस्से भी सुनाते हैं जो उन स्टार से रिलेटेड है जो उस वक्त शाइन करते थे। बट मैं ये कहूंगी कि शाइन तो उनकी आज भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक है, बस थोड़ा हम उन्हें किताबों से निकालते हैं, किस्सों से निकालते हैं, तरानों से निकालते हैं। लेकिन या ऐसे सुपरस्टार्स ना कभी देखे ना कभी दिखेंगे, क्योंकि इन स्टार्स ने ऐसा काम किया है जो इन्हें चमकता हुआ रखने में हमेशा कामयाब रहेगा। जी हाँ, तो सबसे पहले जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। गाने का नाम है तेरी बिंदिया रे। आई डोंट नो बट ये गाना मेरे दिमाग में बज कर रहा था, सो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट विद दिस, क्योंकि गाना बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, लता जी का गाया हुआ है, रफी साहब का भी है। सुनते हैं इसको, करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, सेगमेंट की शुरुआत, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी दोस्तों, इसी के साथ जो किस्सा मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ, वेल ऑफ कोर्स किस्सा तो होगा ही, क्योंकि ये है ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट, मतलब गाने भी होंगे पुराने, किस्से भी होंगे पुराने। ये किस्सा है हमारे सुपरस्टार, यानी सुपर से भी कोई ऊपर स्टार हुआ है तो उनका, और इससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं राजेश खन्ना की बात कर रही हूँ। जी हाँ, काका की बात हो रही है यहाँ पर। और ये किस्सा है एक पत्रकार से रिलेटेड, जी हाँ, पत्रकारिता से रिलेटेड। एक जर्नलिस्ट जो कि सुलेना मजूमदार हुई है, जी हाँ, बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हुई हैं उस वक्त की, बहुत यंग थी वो, और उन्हें उनके जो कंपनी वाले हैं वो भेजते हैं राजेश खन्ना की फिल्म की शूटिंग को कवर करने के लिए। जी हाँ, अब वो जाती हैं फिल्म सिटी, राजेश खन्ना की फिल्म की वहाँ पर शूटिंग हो रही थी, वहाँ पर एक्टर से बात करती हैं, डायरेक्टर से बात करती हैं, वो अपनी सारी स्टोरी को कवर करती हैं, और उसके बाद जो है वो घर जाने के लिए, वहां सर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये वाला वक्त नहीं था, पुराना वाला वक्त था, और उस वक्त फिल्म सिटी जो है वो इतनी चहल पहल वाली नहीं हुआ करती थी, मतलब काफी सुनसान जो है वो इलाका हुआ करता था फिल्म सिटी से बाहर का, और इतने ऑटो और टैक्सीज भी नहीं मिलती थी, बस एक बस हुआ करती थी जो जर्नलिस्ट के लिए और मीडिया वालों के लिए होती थी, और सारे मीडिया वाले और जर्नलिस्ट उसी बस में बैठकर वापस वहां से जाया करते थे। सुलेना ने थोड़ी देर खड़े होकर वहां पर बस का इंतजार किया, और जब उन्हें बस नहीं मिली और उन्हें लगा कि बस अभी पता नहीं कितनी देर बाद आएगी और उससे पहले अंधेरा ना हो जाए, मुझे लगता है मुझे खुद ही यहां से बाहर निकलकर देखना चाहिए और खुद ही मैं देखती हूं कि आगे कुछ मुझे मिलता है या नहीं मिलता है, और मुझे यहां से चल पड़ना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट शी डिड। वो गेट से बाहर आ गई, वो फिल्म सिटी से बाहर आ गई, और वो चल रही हैं उस सड़क पर, और रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान है, और तब फिर वो सोच भी रही थी कि क्या मैंने गलती कर दी कि मैं आ गई पहले ही, मुझे शायद और थोड़ा रुक कर बस का इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन तभी चलते चलते वो देखती हैं कि एक गाड़ी वहां से गुजरती है, और वो गाड़ी उनके सामने आकर रुक जाती है। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ओह, मतलब वो सुलेना मजूमदार वो मतलब ठीक थी ना, उसके बाद वो गाड़ी कुछ गड़बड़ इंसान की तो नहीं थी। वेल नहीं, वो ना सिर्फ किसी गड़बड़ इंसान की थी, बल्कि वो गाड़ी थी उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार की। गेस कीजिए आगे क्या हुआ होगा। वेल, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट, लेकिन पहले मैं आपको एक और खूबसूरत सा गाना सुनाने वाली हूँ।

जी दोस्तों, तो गाने खूबसूरत, किससे भी जबरदस्त। बात हो रही है राजेश खन्ना यानी कि काका की और उनके स्टेडियम की। जी हाँ, और बात हो रही है एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट सुलेना मजूमदार जी की। जी हाँ, और इसके बारे में उन्होंने खुद ही बताया है, और उन्होंने बताया कि कैसे वो बहुत ज्यादा यंग थी जब ये किस्सा उनके साथ हुआ। तो जैसे हमने आपको बताया कि सुलेना मजूमदार जो है वो गई हुई थी राजेश खन्ना की फिल्म की शूटिंग को कवर करने के लिए। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी वहां बना ली थी डायरेक्टर और एक्टर से बात करके, और वो वहां से बाहर निकलती है, लेकिन उस वक्त वहां से कम्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा सर्विसेज नहीं हुआ करती थी, और फिल्म सिटी जहां होती थी वहां पर भी काफी सुनसान इलाका था। लेकिन एक बस हुआ करती थी जो जर्नलिस्ट को वापस लेकर जाया करती थी, लेकिन सुलेना ने इंतजार किया। जब वो बस नहीं आई और उन्हें लगा कि वो और इंतजार नहीं कर सकती है, तो वो वहां से बाहर निकल आई। अब वो वहां से बाहर निकलकर चल रही हैं, सुनसान रास्ता है, उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि क्या उनका डिसीजन ठीक था या नहीं था, शायद उन्हें नहीं आना चाहिए था, शायद उन्हें बस का इंतजार थोड़ी देर और करना चाहिए था। फिर एकदम से चलते चलते उन्हें बाजू में एक गाड़ी जाते हुए दिखती है। जी हाँ, और वो गाड़ी उनको देखकर रुक जाती है, शीशा खुलता है, और वहां पर जो वो देखती हैं वो दंग रह जाती हैं। ऐसा नहीं था कि वो इम्पॉसिबल था, लेकिन थोड़ा पॉसिबल भी कम था। जी हाँ, जो शख्स उस शीशे को नीचे करता है वो कोई और नहीं बल्कि काका है, यानी कि सुपर से भी ऊपर स्टार राजेश खन्ना खुद थे। एंड द फैक्ट कि दिलचस्प बात ये थी कि उस दिन उनकी गाड़ी कोई ड्राइवर नहीं चला रहा था, वो खुद ही चला रहे थे, मतलब वो खुद ही वापस जा रहे थे। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर अकेले ही जा रही हो, तो वो अपनी सारी की सारी सिचुएशन जो है वो राजेश खन्ना को समझाती है। तो राजेश खन्ना उन्हें कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ ताकि तुम आगे वहां से ट्रैवल कर सको इजिली। अब राजेश खन्ना के ये बोलते ही वो खुश हो जाती है और फटाफट गाड़ी के पीछे वाला दरवाजा खोलती है और बैठ जाती है। ये देखकर राजेश खन्ना उनको रेयर व्यू मिरर में हंसने लगते हैं। अब सुलेना मजूमदार उस वक्त इतनी ज्यादा यंग थी और इतनी ज्यादा, मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या किया, उन्हें समझ ही नहीं आया कि राजेश खन्ना क्या क्यों हंस रहे हैं। राजेश खन्ना हंसते हैं और साथ में बोलते हैं चलो ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हारा ड्राइवर हूं। जी हाँ, ऑफकोर्स वो इसलिए कह रहे थे कि सुलेना ने पीछे बैठकर लिटरली राजेश खन्ना को वहां पर ड्राइवर ही बना दिया। बट राजेश खन्ना को ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, इनफैक्ट उन्होंने उसे हंसी में उड़ा दिया और वो कहते हैं चलो ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हारा ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूं। सुलेना को ये बात तब भी नहीं समझ आई, उसके बाद बहुत सालों बाद जब उनमें और मैच्योरिटी आई, जब उन्हें लगा कि उन्होंने दुनिया को थोड़ा देख लिया है, समझ लिया, तो उन्हें याद आया कि तो राजेश खन्ना इसलिए हंस रहे थे क्योंकि मैं वहां पर आगे वाली सीट के बजाय पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी और मैंने लिटरली राजेश खन्ना को ड्राइवर बना दिया था। बट राजेश खन्ना ने उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया, बल्कि उसे हंसी में उड़ा दिया। एंड दैट्स व्हाई ही वाज द सुपरस्टार ऑफ पीपल। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। आई होप आपने हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय किया हो। अपनी फीडबैक हमेशा हमें देते रहिए, क्योंकि उससे हम और भी अच्छे से इसमें सुधार कर पाएंगे। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जिसका नाम है बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, आई थॉट कि क्यों ना इस प्रोग्राम को खत्म किया जाए एक बहुत ही खूबसूरत से नंबर के साथ। एंड हियर इट इज, बाय, सी यू, टाटा। मिलते हैं अब आपसे कल।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: अरे थारी किस्मत में गुलाम लिखे है। रानी गुलाम ने नहीं, राजा ने मिला करे।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: महबूब मेरे।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन कोर्ट में रिश्वत का मामला। ब्रिस्बेन की मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज एक व्यक्ति की पेशी हो रही है। उस पर आरोप है कि उसने एक मर्डर केस की जांच को प्रभावित करने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की। वहीं क्वींसलैंड में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन के इलाकों में मौसम विभाग ने गरज के साथ तेज बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर नई तकनीक। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों की सुविधा और सिक्योरिटी चेक इन को तेज करने के लिए एक नया बायोमेट्रिक सिस्टम टेस्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर छूट का फैसला। क्वींसलैंड सरकार ने ब्रिस्बेन की बसों और ट्रेनों में किराया सस्ता करने की अपनी योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ब्रिस्बेन में हाउसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत। ब्रिस्बेन के शहरी इलाकों में आम लोगों को सस्ते घर मुहैया कराने के लिए काउंसिल ने एक नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। वहीं ब्रिस्बेन रिवर वॉक का मेंटेनेंस। ब्रिस्बेन नदी के किनारे बने मुख्य पैदल रास्ते के सुधार और मेंटेनेंस का काम आज से शुरू हो रहा है, जिससे पैदल यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले केरल में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं और मल्लपुरम में फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। इसके साथ तमिलनाडु में नाश्ता योजना का विस्तार। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इसके साथ गांधी सागर में नया चीता आया है। जी हां, मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आज एक और मादा चीता को छोड़ा गया है। कूनो नेशनल पार्क से लाई गई इस चीते के आने से सेंचुरी में वन्य जीवों की रौनक और बढ़ गई है। वहीं तेलंगाना अस्पताल हादसा। तेलंगाना के आदिलाबाद में IRMS अस्पताल के बच्चों के वार्ड में बीती रात आग लग गई। दमकल कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए 28 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं रेल टिकट बुकिंग पर नया नियम। जी हां, भारत में 15 अक्टूबर से अगर आप 2000 रुपए से ज्यादा का रेलवे टिकट UPI से बुक करेंगे तो उस पर मर्चेंट फीस लगेगी। राहत की बात यह है कि इसका बोझ यात्रियों पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ UN में भारत का बढ़ा समर्थन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को यूरोप के 4 बड़े देश पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक ने अपना पूरा समर्थन दिया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा की शुरुआत। न्यूयॉर्क में आज से UN जनरल असेंबली का सालाना सेशन शुरू हो रहा है। इसमें दुनिया भर के करीब 130 से ज्यादा बड़े नेता और राष्ट्राध्यक्ष वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। वहीं इटली में नए स्कूल नियम का प्रस्ताव। इटली की सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। साथ ही विदेशी छात्रों के अभिभावकों के लिए इटालियन भाषा सीखना अनिवार्य करने की बात कही गई है। वहीं मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ा। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि अगर उन पर नए हमले हुए तो वे नई तकनीकों और हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वहीं बांग्लादेश में ईंधन के दाम बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल और शिपिंग लागत बढ़ने के कारण बांग्लादेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ईंधन की कीमतों में 17% तक का इजाफा कर दिया है। इसके साथ UN में AI पर चर्चा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते खतरों को देखते हुए दुनिया के 20 देशों ने मिलकर एक वैश्विक संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा है जो AI के इस्तेमाल पर नजर रखेगी। वहीं ब्राजील चुनाव में कड़ा मुकाबला। ब्राजील में होने वाले आगामी चुनावों में पहले आए ताजा सर्वेक्षणों में पूर्व राष्ट्रपति लूला और उनके प्रतिद्वंद्वों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम्स में शूटिंग मेडल। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय शूटरों का शानदार प्रदर्शन जारी। रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लो और पार्थ माने की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वहीं वुमेन्स टेबल टेनिस में भारत की जीत। एशियन गेम्स के टेबल टेनिस इवेंट में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ मार्शल आर्ट्स में भारत को ब्रॉन्ज। भारत की युचिका तरियाल ने मार्शल आर्ट्स में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इसके साथ ऐतिहासिक T20 मैच। भारतीय क्रिकेट टीम आज एक ऐतिहासिक एक दिवसीय T20 मैच में जापान का सामना कर रही है। यह पहला मौका है जब दोनों टीमें इस फॉर्मेट में आमने सामने हैं। वहीं चेस ओलंपियाड में सविता का जलवा। चेस ओलंपियाड में भारत की युवा खिलाड़ी सविता श्री ने लगातार 5 मुकाबले जीतकर भारतीय महिला टीम को मजबूती दी है। इसके साथ मौसम की वजह से टला मैच। एशियन गेम्स के आयोजन क्षेत्र में आए तूफान की वजह से आज घुड़सवारी के कुछ मुकाबलों को सुरक्षा के लिहाज से स्थगित करना पड़ा है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132A। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132ANT यानी कि 13

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Listen close what I gotta say. 'Cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्सॉर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्सॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेट।

0: पॉइंट्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
0: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

अगर इश्क हल्का कर दे तो वही सही इश्क है, जो बोझ बन जाए सीने पर वो बस आदत की रेख है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: सांसों की माला पे सिमरू मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बड़े हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसानी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश शोलक दे नाल सुबन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना च वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालो नाल इन्हां गल्लां नूं असीं पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा है। तुसी की कहना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिसानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी ते bisani@bisani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है तुसी ओ अपनाओ, पर साडा नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल अपना फोन चक लो, जुड़ना शुरू कर दो, अपनियां फरमाइशां भेजो या करो दिल दियां गल्लां। जिवें भी जुड़ना है ओ जुड़ो ते नवे पुराने गीत मैं तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी। अज्ज इक बेहद खास जी गल करनी है तुहाडे नाल, करूंगी बातें लैके सुनो।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इस गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दी गलियां दी धुन प्रस्तुत की है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इसनू तैयार किया है। ये गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 41090। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए थे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते चार छे संदेश अलग दराल से बने हुए। अगली जिहड़ी गल हैगी है वह है तवायफ गौहर जान की। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी ये कहा जाता है। तो कहा जाता है कि कहानी कितने ना कितने उसकी है। मनिया जाता है कि ये कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाण वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। ए गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नू बयां करता हैगा। इस औरत नू तवायफ कहंदे हैगे लोग, सानू नहीं पता कहंदे हैगे ने, रिपोर्ट्स कहंदियां ने। कई रिपोर्ट्स मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी जो बनारस दी दाल मंडी विच रहंदी सी ते एक तवायफ सी। अजिहा मन्निया जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलो गुजरदे समय ना जदों लंघदे समय ना उन्होंने असलम नाम दा एक आदमी उन्होंने मिलिया सीगा। उत्थों ही तां कहानी शुरू हुई सी। दसदी हां उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच पर पहला सुनो एक गीत।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसोनी 101.1 FM ते जी आप जी संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो बनारस की तवायफ गौहर जान का प्यार हुण इस दी गल करनी तां बनदी बनदी है। देखो जे गल करिए ना उन्हां नाल कोई गलबात नहीं हुई पर उन्हां ते लट्टू सी। कौन ओ जिन्हां दी गौहर जान दी गल चल रही हैगी है ते जिस इंसान नूं मिले सी मैं पहला दस्या सी ना नाम नाम सी असलम ते लट्टू सी ते उन्हां दे गहरे प्यार करन लगी सी। एक दिन ना बहुत डूंगा प्यार एक दिन वह गायब हो गए। पूछताछ करन ते उन्हां नूं पता चलिया कि वह मिर्जापुर काम करन गए हैगे ने इसलिए गाने विच उन्हां दा जिक्र हैगा है। दिल्ली स्थित भोजपुरी संगीत अते साहित्य दे विशेषज्ञ जिहड़े माहिर हैगे ने निराला विदेसिया वह कहिंदे ने कि बहुत बाद विच उन्हां नूं पता लग्या कि अंग्रेजां ने उन्हां नूं रंगून भिजवा दिता। इस गाने विच अगे दी लाइन इसे ते हैगी है इस नाल पता चलदा है कि अपने प्रेमी दे लई किस हद तक जान नूं तैयार सी।
1: Show mercy on it.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वंसर ओवान एम ते चार चे संदेश अलग दिनाल सी बने हुए गाने विच गिरमिटिया गीत भी कहते हैं ने गाने ना इस नू इस गाने नाल जुड़ी एक होर कहानी यह हैगी है कि एक गिरमिटिया गीत है जिस नू विदेश भेजे गए बंधुआ मजदूरां दे पलायन ते आधारित मनिया जाता है। इस तो इस विच ना कई लोगों का पलायन कट मजदूरी ते काम लब्बन दे लई होया सीगा। इस गीत नू उस तौर नाल भी जोड़िया गया हैगा। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान अपने संगीत प्रोग्रामा विच कजी बजाउंदे है सीगे ते अक्सर कहंदे सी कि उन्होंने इस नू बनारस विच अपने बचपन विच सुनिया सी। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी एक कजरी गाए हैगे ने ते अपनी किताब चंदन किवाड़ विच गौहर खान दी कहानी दा गौहर जान दी कहानी दा जिक्र भी किया है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

पूर्वी उत्तर प्रदेश दे बिहार दे कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषां दे पलायन दा वी मतलब संबंध रखदा हैगा जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नूं अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिम्पशियों विच भेजा जांदा सी जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक,

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी वन सर वन एम ते जी आर छे संदेश अलग दिराल से बने हुए हूँ। देखो कचौड़ी गली बारे में तुहानू इन्ना कुछ दसता हैगा है, तुसी देखियो जरूर एक बार गीत, ते तुसी जिहड़े घर दे विच बजुर्ग होणगे ना शायद उन्होंने कुछ पता होवे या फिर गूगल करो तो तुहानू पता लग जाना हैगा कि यह गल्लां किन्नियां कुछ सच है किया ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्लां हैगियां ने जुड़ियां होईयां, जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र। 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी, पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच वी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दिती सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह, जिस दे तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

इतिहास ते इतिहास नूं ना किवें ताजा कर दिता है। हुण तुसीं इह गीत सुण लिया हैगा या नहीं, तुसीं फटाफट दे नाल दसो ते होर दसो कि किस गीत की तुसीं पिछे की कहानी तुसीं जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे गीत हैगे आ जिहे जिन्हां दे पिछे बहुत लंबी कहानी हैगी आ। तुसीं जरूर दसो ते जुड़दे रहो रेडियो प्लसवानी विद सरोवर एम साडे फेसबुक पेज है जी plusvani@plusvani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा अपना पर साडे नाल गल्लबात जरूर करदे रहो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो। मैं कल करूंगी मुलाकात। रखो अपना ख्याल। सत श्री अकाल।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: पे। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं।

हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। Phone 3630-5438, 3630-5438, या mobile 0415-952-660, 0415-952-660.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: साला दिल भी गया और लिवर भी. मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते. तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते.

0: मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है।
1: तुम जीत गए, हम जीत गए।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर जे कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355।

0: कहाँ से खरीदूँ पता ही नहीं।
1: आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनीबैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: पार्टी

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

हरे कृष्णा। आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के श्री चरणों में इस नंद किशोर दास का सादर प्रणाम। हमारे समाज में स्वाभाविक ही स्त्रियों को किस प्रकार से रहना उस पर बहुत ही महत्व दिया जाता है, परंतु स्वयं पुरुषों को कैसा होना चाहिए इस विषय पर उतनी अधिक चर्चा नहीं होती। एक पुरुष पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, एक पति हो सकता है और एक पुत्र होता है। सर्वप्रथम एक पुरुष किसी और स्त्री और पुरुष का पुत्र होता है। किस परिवार या कैसे परिवार में एक पुत्र जन्म लेता है, ये उनके पूर्व कर्मों पर आधारित है। एक ही जन्म के अंतर्गत हम सैकड़ों कर्म करते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ हमने कर्म किए होते हैं और जैसी भावना और इच्छाओं को लेकर हम अपने शरीर या देह का त्याग करते हैं, उसी के आधार पर दूसरा जन्म कैसे परिवार में होगा, कैसा शरीर प्राप्त होगा और उस शरीर में कितने दुख और सुख प्राप्त होंगे, किस प्रकार के सुख और दुख प्राप्त होंगे, ये सब उसी आधार पर निश्चय किया जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद हमें चॉइस मिलता है, क्या हम चुन सकते हैं कि हमें कैसा शरीर प्राप्त होगा। जो हम किसी एक विशेष शरीर या विशेष परिवार में जन्म लेना चाहे तो मृत्यु के बाद क्या हम वो चुन सकते हैं। एक बार मृत्यु हो गई उसके बाद जो भी कुछ हम कहते हैं ये निर्णय उस कहने के ऊपर नहीं लिया जाएगा। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक अर्थात हमारे जीवित अवस्था में हमने जो भी कुछ किया था और जैसी भावनाओं को हमने स्वयं अपनाया था, केवल उसी आधार पर हमारा दूसरा शरीर या देह निर्मित होता है। तो क्या ये बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं कि हमें कैसा शरीर प्राप्त हो और किस परिवार में हम जन्मे? इसका उत्तर है हाँ और ना। ये अपने मृत्यु के बाद हम नहीं चुन सकते, परंतु हम जीवित अवस्था में ये चुन सकते हैं कि हम कैसे कर्म करें और कैसी भावनाओं को अर्जित करें। क्योंकि मृत्यु के बाद जो हमारी जीवित अवस्था थी उसी के आधार पर यह निश्चय किया जाएगा। मरने के बाद नहीं निश्चय होता है, अर्थात हमारे भविष्य का निर्माण हम अपने जीवित अवस्था में ही करते हैं। मृत्यु के बाद तो केवल उन कर्मों का परिणाम प्राप्त करने का समय होता है। तो जो हमारा भविष्य उस पर आधारित होगा, अभी जो हम कर रहे हैं या जैसी इच्छाओं को प्रकट कर रहे हैं, तो क्या यह महत्व का नहीं कि अभी जो हम कर रहे हैं उसको बड़े सोच समझ कर करें, और जो इसकी परवाह नहीं करते, जो मन में आया वो करते हैं, उसे हम भला बुद्धिमान कैसे कह सकते हैं? ना कुछ सोचा और ना ही समझा, केवल कर दिया। ऐसी विचारधारा आजकल इस समाज का एक भाग बनने लगी है। जो एक भेड़ा गलती से कुएं में गिर जाए तो जितने और सब भेड़े हैं वे भी कुएं के अंदर जाने लगते हैं। इसे कहते हैं शीप मेंटालिटी, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट जस्ट डू व्हाट द अदर्स डू। आजकल तो गलत मार्ग पर भटकाने के लिए लोगों को एडवर्टाइज भी नहीं करनी पड़ती। लोग हानिकारक मार्ग बिना हिचकिचाते हुए अपनाते हैं और जिनमें उनका भला होता है उन्हें वो टुटकारते हैं। तो जिस किसी भी प्राणी का जन्म कहीं पर भी होता है और जिस किसी भी परिवार में होता है वो सब पूर्व कर्म और पूर्व भावनाओं का परिणाम ही है, यही वैदिक शास्त्रों का कहना है। तो जो हमें अपना भविष्य और अपना भाग्य बदलना हो तो वो अभी हमें करना होगा, जीवित अवस्था में, मृत्यु के समय नहीं। तो जब एक मानव पुरुष का जन्म होता है तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम और अपनी पूर्व भावनाओं को लेकर वो जन्म लेता है। फिर जन्म लेने के पश्चात किस प्रकार के कार्य से हम आपो आप आकर्षित होते हैं और किस प्रकार की भावनाओं और इच्छाओं को हम प्रकट करते हैं, यही प्रमाण होता है कि हम अपने पूर्व जन्म में कैसे थे, किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो जब हमें यह मनुष्य तन प्राप्त होता है, हमारा सर्वप्रथम उत्तरदायित्व अच्छे कर्म और अच्छे गुणों को अर्जित करने में है। हमने जिस पोजीशन या स्तर से यह मनुष्य जीवन प्राप्त किया था, हमको चाहिए कि हम उससे भी ऊंचा स्तर प्राप्त करें। हमें सावधान होना होता है कि हमारी प्रगति होने के स्थान पर
हमारी दुर्गति ना हो जाए। लोग कहते हैं कि आज के समय में ऐसा करना बड़ा ही कठिन है। हमारे गुण सुधरते नहीं है परंतु बिगड़ते जाते हैं। हमारी इच्छाओं और एक्सपेक्टेशन की कोई सीमा नहीं होती है। हमारे आसपास जो भी सगे संबंधी होते हैं, हम आशा रखते हैं कि वे हमारी इच्छा पूरी करें, जैसे कि उनका जीवन केवल हमारी ही इच्छा पूरी करने के लिए था। अपने स्वार्थ और लोभ पर हम कभी कुछ अंकुश लगाने की कोशिश नहीं करते। जो हम ऐसे ही करते जाए तो हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे कैसे? हमारा लक्ष्य केवल इस जीवन को ठीक ठाक बनाने के लिए नहीं है, हमें अपने भविष्य की तैयारी करनी है। तो जितने मानवों के पुत्र होते हैं, वे जब भी पुत्र बनते हैं, पुत्र होने के साथ साथ पुत्र बनने का कर्तव्य भी आ जाता है। जब पति बनते हैं तो पति का कर्तव्य आ जाता है। जो भाई बनता है तो भाई का भी कर्तव्य आ जाता है। और जो पिता बनते हैं उसे पिता का कर्तव्य भी निभाना होता है। जो सेवक है उसे स्वामी के प्रति कर्तव्य निभाना होता है। और जो स्वयं स्वामी कहलाता है उसका भी सेवकों के प्रति कर्तव्य होता है। हम कई बार देखते हैं पशु भी कर्तव्य निभाते हैं। तो जो हम मनुष्य शरीर में हो तो ये कर्तव्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। परंतु आज के समाज में कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम कुत्तों पर विश्वास कर सकते हैं परंतु मनुष्यों पर भरोसा करना बहुत ही कठिन होता है। झूठ तो जैसे उसके मुख पर निवास करता है और किसी को धोखा देने को चतुराई माना जाता है। तो क्या हम पशुओं से भी अधिक गिर गए हैं? पति पत्नी को तो एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए और जहां अच्छे गुण हो वहीं पर प्रेम उत्पादन हो सकता है। जहां गुण ही बुरे हो वहां प्रेम कैसे टिक सकता है? हम सब ने कभी काल किसी के प्रति कठोर वचन कहे होंगे, संभवतः अपने परिवारजनों को ही कहे होंगे, और कठोर वचन बाणों से भी अधिक चोट पहुंचाते हैं। इसी कारण कठोर वचन से हम कई बार घायल भी हुए होंगे और ये कठोर वचन हमारे मस्तिष्क को वर्षों तक घायल करते ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई भी बात कितनी भी अच्छी तरह से कही जाए उनका रेस्पॉन्स कठोर ही रहता है। वो प्रेम से कही हुई बातों को प्रेम से जवाब देना जानते ही नहीं। किसी भी संबंध में घृणा और नफरत का स्थान होना ही नहीं चाहिए। और जो इन्हें हम स्थान दे दे वहीं से संबंध बिगड़ने लगते हैं। स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो। स्वयं जीने के लिए दूसरों का सुख चैन मत छीनो। इसे ईर्ष्या या मात्सर्य कहते हैं। ये दूसरे सभी अवगुणों में से सबसे हानिकारक है, क्योंकि ये गुण केवल दूसरों का विनाश नहीं करता साथ ही साथ करने वालों को भी जलाकर राख कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये सबसे हानिकारक है। हम इन्हीं गुणों के वशीभूत हो जाते हैं। जिस प्रकार जब किसी के ऊपर भूत सवार हो जाता है तो वो अनाप शनाप बकने लगता है और वो अपने आप को भूल जाता है। उस समय उसके अपने हित में क्या है उसे उसकी भी परवाह नहीं होती है। अर्थात हम उन्हीं गुणों का गुलाम बन जाते हैं। ये गुण ही हमें कंट्रोल करने लगते हैं और जो हमें नहीं करना होता है वही हम कर बैठते हैं। मुख में से गालियां निकलने लगती है। अपने ही प्रियजनों पर हमारा हाथ उठने लगता है। हमारे सबसे निकट संबंधियों के साथ ही हमारा संबंध बिगड़ने लगता है। जो हमारे हितेशी होते हैं उन्हीं के विरोधी हम बन जाते हैं, क्योंकि हम काम और क्रोध के वश में हो जाते हैं। इसी कारण हमारी कामनाओं को पूरा करने के लिए हम किसी की भी परवाह नहीं करते और हमारा लक्ष्य केवल हमारा स्वार्थ बन जाता है। और इसीलिए उसको पूरा करने के लिए हम अपने ही प्रियजनों को धमकी देने लगते हैं और ब्लैकमेल करने लगते हैं। हम आस्ते आस्ते उन्हीं को अपना दुश्मन मानने लगते हैं, उसे शत्रु भाव से देखने लगते हैं और हमारी अपनी बात को महत्व देने के लिए सामने वाले को उनके धर्म का पाठ पढ़ाने लगते हैं, जबकि हम स्वयं अपने ही धर्म का पालन न कर रहे हो। पुरुष अपनी पत्नी को कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा धर्म है वही करना जो तुम्हारा पति तुम्हें कहता है। और पत्नी पर यह बात असर कैसे करेगी जब पति स्वयं पति जैसा व्यवहार नहीं करता है? अर्थात पति पति धर्म ना निभा रहा हो।
विचार कीजिए, जब हम सिंगल होते हैं, हमारा विवाह नहीं हुआ होता है, उस समय भी हमारे पास कर्तव्य होते हैं। माता पिता के प्रति कर्तव्य, अन्य रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य, गुरुजनों, टीचर्स के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, क्योंकि इन सब के साथ हमारा कोई संबंध होता है, और जहां संबंध होता है वहां कर्तव्य आ जाते हैं। और जब एक सिंगल व्यक्ति विवाहित जीवन में प्रवेश करने को सोचता है, तो उसे उस संबंध में, विवाहित जीवन में क्या कर्तव्य होते हैं, वो पहले से ही समझने होते हैं। क्योंकि जब और नए संबंध स्थापित होते हैं, तब उन संबंधों के प्रति भी कर्तव्य पालन करने होते हैं, और जो हमें उन कर्तव्यों को ना निभाना हो, तो हमें उन संबंधों को स्थापित करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निश्चित ही वो संबंध टिकेगा नहीं जहां कर्तव्य पालन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी कि सच्चे प्रेम का एकमात्र लक्षण है निस्वार्थ होना। पति अपने स्वार्थ की न परवाह करते हुए वही करेगा जिनमें पत्नी खुश रहे, और वही आदान प्रदान पत्नी करेगी। पत्नी भी अपना स्वार्थ छोड़कर पति को संतुष्ट करने की चेष्टा करेगी। जब दोनों ओर से यही भावना हो, तो आपस में संघर्ष होगा ही क्यों? परंतु जो हम व्यवहारिक रूप से देखें, तो ऐसा शुद्ध प्रेम तो इस जगत में बहुत कम ही दिखाई देता है, और इसलिए हमारा कर्तव्य पालन ही वो एक चीज है जिससे कुछ हद तक ये संबंध टिकते रहते हैं। और जहां बारंबार कर्तव्य पालन का ही उल्लंघन होता रहे, वहां ये संबंध केवल एक औपचारिक रूप ही धारण करता है और उससे गहरा हो नहीं पाता। और जिस संबंध में फिर इस प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता, उस संबंध में साथ में रहते हुए भी दूरी होने लगती है। पति और पत्नी के संबंध में पति आश्रय होता है, क्योंकि पत्नी उनका आश्रय लेती है। वो अपने पिता का आश्रय छोड़कर पति का आश्रय लेती है, वो पति पर निर्भर हो जाती है। तो जो पति आश्रय बना हुआ होता है, उनका आश्रय लेने वाले के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। उनका सर्वप्रथम कर्तव्य है उनकी सुरक्षा, उनका लालन पालन और उनके प्रति स्नेह प्रकट करना। द शेल्टर शुड गिव प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस एन अफेक्शन टूवर्ड्स द शेल्टर्ड। बट इफ द शेल्टर्ड इज गेटिंग ओनली फियर एंड रिजेक्शन एंड हार्श वर्ड्स फ्रॉम द शेल्टर, देन द शेल्टर इज फेलिंग इन हिज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जो शरण में आते हैं, उन्हें जो केवल भय, तिरस्कार और कठोर वचन ही मिलते हैं, तो शरण देने वाला अपना उत्तरदायित्व निभा नहीं रहा है। तो सभी पतियों को, जितने लोग भी हस्बैंड्स बने हैं, उन्हें ये याद रहे, पत्नी एक गुलाम नहीं होती है। द वाइफ इज नॉट टू बी ट्रीटेड लाइक अ स्लेव, शी हैज टू बी डेल्ट विद अफेक्शन, इवन दो एट टाइम्स शी इज एट फॉल्ट। पति को चाहिए कि पत्नी से स्नेह पूर्वक पेश आए, भले कभी काल पत्नी का दोष क्यों ना हो। विचार करने योग्य ये बात है कि जब बच्चे कुछ गलती करते हैं, तब उसे हम प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं, और जब हम कभी काल बच्चों के प्रति कठोरता का भी उपयोग करते हैं, तो उस प्रकार की कठोरता बच्चे समझते हैं, और वे जानते हैं कि इस कठोरता के बावजूद भी हमारे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं। बच्चे होते हुए भी वे कठोरता में प्रेम देख सकते हैं। उसी प्रकार से एक पत्नी भी अपने पति के कठोरता में प्रेम देख सकती है, जो वो प्रेम हो तो। प्रेम के स्थान पर जो उसे केवल एक्सप्लोइट ही किया जा रहा हो, उसका शोषण कर रहा हो भी, हमारे माता

अधिकतर ये टॉलरेंस लिमिट कम हो जाने के कारण होता है। और जैसे हम कह रहे थे कि चिंताजनक बात वास्तव में ये है कि जब ये रिश्ता टूट रहा हो, डिफरेंसेस हो चुके हो, कि अधिकतर दोनों पार्टियों के तरफ से इस संबंध को बचाने के लिए लगभग कुछ प्रयास किए ही नहीं जाते हैं। दोनों ही इस संबंध को जल्द से जल्द तोड़ना चाहते हैं। वे सोचते हैं जितना जल्द ये डिवोर्स हो जाए उतना अच्छा है। और कई बार इस डिवोर्स के मध्य में उनके बच्चे होते हैं। बच्चों को एक बहुत ही अनुचित स्थिति का सामना करना पड़ता है। उन्हें कहना पड़ता है कि तुम या तो अपनी माँ के साथ रह सकते हो या अपने पिता के साथ रह सकते हो, परंतु दोनों के साथ कभी नहीं रह सकते हो। बच्चे अपने आप को अचानक एक बिल्कुल अनुचित परिस्थिति में पाते हैं। बच्चों को तो उनके माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए और दोनों एक साथ चाहिए, परंतु कई बार ये जो उनको आवश्यक है वो उसे प्राप्त नहीं होता। और आप सब ने कभी न कभी यह अनुभव किया होगा कि जब किसी मनुष्य को किसी भी एक चीज की आवश्यकता हो परंतु उसे वो चीज मिलती नहीं, तब वो चिड़चिड़ा जाता है, वो इरिटेटेड हो जाता है। ऐसी अवस्था में अनुचित कार्य करने की संभावना अधिक हो जाती है। अर्थात अधिकतर ये देखने में आया है कि जहां बच्चों को पारिवारिक संतुलन नहीं मिलता, वहां कई बार ये बच्चे बिगड़ने लगते हैं। अर्थात वे मानसिक रोग से भी पीड़ित हो सकते हैं। इससे उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी कारण वैदिक संस्कृति में जब कभी भी स्त्रियों और पुरुषों के संबंधों की बात मिलती है तो वो उपदेश बड़ा ही गंभीर रूप धारण करती है, क्योंकि इसी के ऊपर समाज का भविष्य निर्भर है। किसी भी स्त्री और पुरुष को पति और पत्नी के संबंध में बांधने से पहले बहुत ही सावधानी से उनके विषय में बहुत सी जानकारी एकत्र की जाती थी। सर्वप्रथम लड़कों के माता पिता तथा लड़कियों के माता पिता भी उनकी जन्म कुंडली का निरीक्षण कराते थे। उनके स्वभाव, उनकी दिलचस्पियां और उनके कुल और परिवार से भली भांति परिचित होते थे। क्या लड़की लड़कों के परिवार के साथ ठीक प्रकार से रह पाएगी, क्या उनके गुण, उनके आचरण और उनकी अभिलाषाएं एक दूसरों से मिलती है, क्या वे धर्म के संबंधित कार्यों में एक दूसरे के सहयोगी बन सकेंगे, क्योंकि एक बार जो संबंध बना दिया गया और वो संबंध फिर टिका नहीं, तो ना तो केवल ये दंपति दुखी होंगे परंतु इनके आगे आने वाली पीढ़ियां भी समस्या में पड़ जाएगी, और यहाँ तक कि कुल के सदस्य भी दुखी हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही विवाह होता है, कई अनजाने लोग हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। इसी कारण विवाह केवल दो व्यक्तियों के मिलन की बात नहीं है जैसे आजकल माना जाता है, परंतु दो कुलों का संगठन होता है। आज के समाज में विवाह करने के लिए क्या देखते हैं? सर्वप्रथम आर्थिक अवस्था देखते हैं, अर्थात पैसे और धन धान्य, पैसे और प्रॉपर्टीज। उसके बाद देखा जाता है शारीरिक सुंदरता और आकर्षण। और जिस समाज में लड़के और लड़कियां खुलेआम एक दूसरे से मिला करते हैं और अपनी तृप्ति के लिए एक दूसरे से मोहित हो जाते हैं, तो ऐसे लड़के और लड़कियां कई बार अपने माता पिता की सलाह भी नहीं लेते हैं। स्वयं उनको कौन पसंद है वो चुनाव कर लेते हैं और उसके बाद माता पिता को पता लगता है। तो कोई कह सकते हैं कि इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी अपने जीवन में जब हम कोई निर्णय करते हैं और वो निर्णय हमारे सारे भविष्य पर एक गहरा प्रभाव डाल सकता है, तो उसमें अनुभवी लोगों की सलाह लेने में क्या विपत्ति आ सकती है? कई बार ऐसा होता है कि अनुभवी लोगों से हमें कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिस विषय को हमने कभी सोचा भी नहीं हो। इसी कारण हमारे जीवन में कोई भी सीरियस कदम उठाने से पहले हमारे लिए ये अच्छा हो सकता है कि हम ऐसे अनुभवी लोगों की सलाह लें जिसे हम जानते हो और जिस पर हमें विश्वास हो कि वे हमारे हितैषी है, हमारा भला ही चाहते हैं। वैदिक संस्कृति में जिन लोगों की उम्र हो जाती थी और उम्र होते हुए जीवन का कई प्रकार का अनुभव हो जाता था, ऐसे लोगों को बड़ा ही बहुमूल्य समझा जाता था। आज के समय में तो अधिकतर बूढ़े लोगों को यूजलेस समझा जाता है, और ये बूढ़ा तो केवल बिल्कुल यूजलेस है, बूढ़े लोग समाज में एक बोझा बनकर रहते हैं, ऐसा समझा जाता है। बट दे कैन हैव अ वेरी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक टू द सोसाइटी। वे समाज में एक बहुत ही उत्तम योगदान दे सकते हैं। इसी कारण पूर्व युगों में

0: उनको सम्मान दिया जाता था, उनकी रक्षा की जाती थी। ये नई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन जाते थे। तो जब कभी भी हमारे जीवन में हमें कोई ऐसा निर्णय करना पड़ता है जो हमारे भविष्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो, तो कोई भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमारे अनुभवी शुभचिंतकों का मत लेने में क्या अनर्थ हो सकता है। वैदिक संस्कृति में तो विवाह निर्धारित करने से पहले उस नवयुवक और उस नवयुवती की एस्ट्रोलॉजिकल मैचिंग की जाती थी। दोनों की कुंडलियों को देखते थे कि इन दोनों में मेल हो सकेगा या नहीं। विल द पेयर बी कॉम्पेटिबल और नॉट, क्या ये कन्या लड़के के परिवार के साथ मिलजुल कर रह पाएगी। क्योंकि विवाह से पहले ही इन सभी मूल विषयों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाता था। इसी कारण उन दिनों डिवोर्स केसेस तो लगभग होते ही नहीं थे। और आज के समाज में जब ऐसे कई विषयों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है या उसे महत्वपूर्ण माना ही नहीं जाता है, तो कई संबंध थोड़े ही दिन में टूट जाते हैं। यहाँ तक कि जो लव मैरिज कहते हैं, जहाँ एक नवयुवती और एक नवयुवक एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, कई ऐसे लोग भी विवाह के बाद अलग हो जाते हैं। वैदिक संस्कृति के दृष्टि से जो देखा जाए तो जो जीवन में जो चार आश्रम होते थे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उसका प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन जो हम आज के समाज में देखे, तो आध्यात्मिक लक्ष्य न होने के कारण ये चारों आश्रम क्या बन चुके हैं। ब्रह्मचारी आश्रम तो केवल स्टूडेंट लाइफ बन गया है। उन दिनों ब्रह्मचारी केवल एक स्टूडेंट नहीं था, उनके स्टडी का पर्पस, उनके अध्ययन का लक्ष्य आध्यात्मिक और भौतिक दोनों होता था। आजकल के स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, परंतु उनका लक्ष्य केवल एक ही है कि अपने स्टडीज के माध्यम से वो आर्थिक उन्नति करे, पैसे कमाए और उनसे मौज करे और उनके परिवारजनों को मौज कराए, बस। यूजुअली देयर इज नो अदर पर्पस। हमारे स्कूलों में स्टूडेंट्स को एकेडेमिक सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, परंतु जीवन के वैल्यूज, आदर्श इत्यादि नहीं सिखलाए जाते हैं। जीवन के परम लक्ष्य के विषय में लगभग टोटली अज्ञानी ही होते हैं वो, और जो थोड़ा कुछ उन्होंने सुना भी हो तो उसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज बीइंग गिवन नो वैल्यू, जो सबसे बहुमूल्य है उसे कोई मोल नहीं दिया जा रहा है। तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं रह गए, वे केवल ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स बन गए। और रही बात गृहस्थ आश्रम की, तो समाज ऐसे सोचने लगा कि गृहस्थ आश्रम का अर्थ है घर पर रहना, परिवार बसाना, बच्चों की परवरिश के लिए एक अनुकूल वातावरण निर्मित करना। परंतु घर तो अन्य प्राणी भी बनाते हैं। एक सांप एक बिल बनाता है, एक पंछी एक खोता बनाता है। अपने जीवन के निर्वाह के लिए ये लोग भी घर बनाते हैं। तो मनुष्यों को भी अपने जीवन के निर्वाह के लिए घर की आवश्यकता होती है, परंतु ये घर तो जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वैदिक साहित्य कहता है कि घर को एक आश्रम बना देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अन्य जो दो आश्रम है, वानप्रस्थ और सन्यास, उन दोनों आश्रमों को अपनाने की किसके पास क्षमता रह गई है। वानप्रस्थ का अर्थ है वन को प्रस्थान करना, पारिवारिक जीवन से रिटायर होकर वन में जाकर बस कर मृत्यु के बाद जहां हम जाने वाले हैं उसकी तैयारी करना। आजकल तो रिटायर्ड लोग केवल घर पर रहते हैं, उन दिनों तो राज ऋषि राजा महाराजा लोग भी अपने महल को छोड़कर वन को प्रस्थान कर देते थे। आज क्योंकि आध्यात्मिक लक्ष्य रह ही नहीं गया है, इसी कारण वानप्रस्थ की अवधि भी वे अपने घर पर ही बिताते हैं। और सन्यास की तो बात ही कहां, सब कुछ का त्याग करके केवल भगवान की सेवा में ही लीन हो जाना, ये तो आजकल देखना बहुत ही दुर्लभ है। वैदिक संस्कृति के अनुसार आज भी साधु सन्यासियों का सम्मान किया जाता है, और कई बार इसका अनुचित लाभ उठाने के लिए साधुओं का रूप धारण करके कई ढोंगी लोग भी साधुओं का नकल करते हैं, जबकि वो अपने अंतरात्मा से साधु है ही नहीं। और इस प्रकार वे समाज को धोखा देते हैं अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे धोखा देने वाले लोगों का सच समाज के सामने आ जाता है, तब कहीं पता चलता है कि ये तो कोई ढोंगी बाबा थे। क्योंकि आज के समय में लोग अधिकतर आध्यात्मिक जीवन के विषय में अज्ञानी होते हैं, इसी कारण उन्हें साधुओं की परख कैसे की जाए वो जानकारी नहीं होती। इसी कारण उनके साथ छल करना बड़ा ही सहज होता है। इसी कारण कई ढोंगी लोग साधुओं का वस्त्र पहनकर लोगों को धोखा देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। भगवान के नाम पर किसी को ठगना, किसी से छल करना एक बहुत ही भीषण अपराध होता है। ऐसे लोग निश्चित ही नरक के अधिकारी बनते हैं। तो जैसे हमने कहा कि अधिकांश लोग रिटायर तो हो जाते हैं परंतु वानप्रस्थ लेकर वन को प्रस्थान नहीं करते, और आज के समय में ऐसा किया भी नहीं जा सकता है। करोड़ों की संख्या में से शायद कोई एक व्यक्ति ऐसा मिले जो ऐसा कर सके, परंतु आम जनता के लिए ये तो संभव है ही नहीं। और संन्यास आश्रम का तो एक बहुत ही उत्तम उत्तरदायित्व होता है। सभी वर्ण और आश्रम में एक सन्यासी का सबसे उत्तम स्तर होता है। वो अपने आचरण और गुणों से इस संसार से अनासक्त होता है। उसका लक्ष्य आध्यात्मिक और केवल आध्यात्मिक ही होता है। उसे न तो केवल शास्त्रों का ज्ञान होता है परंतु शास्त्रों का अनुभव भी होता है। शास्त्रिक ग्रंथों का साक्षात्कार करते हुए उनका एकमात्र कर्तव्य होता है कि वो भटके हुए मनुष्य समाज को मार्गदर्शन दे। वैदिक साहित्य का ये कहना है कि चाहे कोई किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास, किब विप्र किब न्यासी शूद्र केने नया जय कृष्ण तत्ववित्त सय गुरु होय। चाहे कोई विप्रवर ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र हो, जो वो कृष्ण के संबंधित कृष्ण विज्ञान जानता हो और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हो, तो उसे गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो आज के समय में सन्यासी और वानप्रस्थ लगभग कोई बनते नहीं है। अधिकांश लोग घर पर ही रहते हैं। इसी कारण जो ये घर पर रहने वाले लोग जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो उसे अपने घर पर ही ऐसे रहना होता है जैसे वो एक आश्रम में रहते हो, जहां लक्ष्य होता है आध्यात्मिक उन्नति। तो जो हमें जीवन भर घर पर ही रहना हो और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना हो, तो हमारा वैवाहिक जीवन का उस लक्ष्य के लिए अनुकूल होना परमावश्यक है। विवाहित जीवन को स्वीकार करें, परंतु उत्तरदायित्व सहित अनुभवी लोगों की सलाह लेते हुए और शास्त्रिक ग्रंथों की भी सलाह लेते हुए। ऐसा करने से ये अधिक संभावना है कि हम एक अनचाहे घरेलू परिस्थिति से बच सके। जो घर में ही सुख, शांति और चैन ना हो, तो ऐसे वातावरण में आध्यात्मिक उन्नति करनी अत्यंत कठिन हो जाती है। इसी कारण कुछ भी हो जाए, हमें घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए जितने हद तक हमसे हो सके। और वैदिक साहित्य ये सलाह देता है कि जो ऐसा ना हो सके, तो ऐसे घर में रहने से क्या लाभ। जो आज के इस विषय पर जो किसी भी हमारे प्रिय श्रोतागणों को कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य ही अपने प्रश्नों को हमारे पास ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vedvani@gmail.com। हमारा साथ देने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब हम आपकी सेवा में श्रीमद् भागवत पुराण में से एक कथा प्रस्तुत करते हैं।
1: The adaptation of today's story appeared in the book Coming Back, published by the Bhaktivedanta Book Trust in Los Angeles. Your narrator is Amala Bhaktadas. And now today's story entitled The Resurrection of King Chitraketu's Son.

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर, आपके अपने दोस्त और होस्ट आज चांदनी जैन, और लेकर हाजिर हो चुकी हूँ आपसे के बीच आने का सफर विद मॉर्निंग डोज ऑफ म्यूजिक, मस्ती और इंफॉर्मेशन। मैं हूँ आपकी दोस्त तो हूँ ही, और साथ ही साथ आप सभी को बहुत सारी बातें बतानी है भाई। जी हाँ, आप सभी मॉर्निंग में देखे, सब जिन्हें मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके होंगे, बहुत लोग जो है अपने ऑफिस के लिए तैयारियां कर रहे होंगे, तो आप सभी एक बात याद जरूर रखिएगा कि आज का दिन कल से बेटर हो सकता है, पर स्टार्टिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कि मेन बात यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव काम करिए। सो वॉल्यूम थोड़ा सा अप कीजिए, स्माइल कीजिए और ब्रिस्बेन की इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग को वेलकम कीजिए। आज के शो में हम बहुत सारी बातें सुनेंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अपडेट्स जानेंगे, इंडिया से इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एक दो फन फैक्ट्स, बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक फील गुड सॉन्ग के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में। जी हाँ, सॉन्ग के बाद क्या एनर्जी थी भाई। गुड मॉर्निंग वंस अगेन ब्रिस्बेन। वैसे क्वेश्चन है, आपकी मॉर्निंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है दोस्तों? अलार्म बजना, बेड से निकलना, या फिर 5 मिनट बोलकर 30 मिनट हो जाने वाला? अगर आपका आंसर लास्ट वाला है ना, तो बिलीव मी, आप अकेले नहीं है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। और जो लोग अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं, डिलीवरी करते हैं, या फिर हेल्थ केयर में काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, या फिर बिजनेस में है, ब्रिस्बेन की तरफ से आप सभी को सैल्यूट है भाई। आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है तब जब दुनिया काफी लोगों की अभी जो है सो रही होती है और आप उससे पहले जाग चुके होते हैं। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

आइए इसी के साथ जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ न्यू अपडेट्स। ऑस्ट्रेलिया में आज कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंडस्ट्रियल एक्शन की वजह से एयरपोर्ट ऑपरेशंस को लेकर ट्रैवलर्स को डिलेज का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिस्बेन समेत कुछ मेजर एयरपोर्ट्स पर बॉर्डर जो है वो प्रोसेसिंग डिलेज की इन्फॉर्मेशन सामने आई है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम लेकर जरूर निकलेगा और एयरलाइन एयरपोर्ट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चेक करना सेंसिबल रहेगा। जानेंगे और भी बहुत सारी बातें अपडेट्स, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वहीं अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया गवर्नर माइकल बुलॉक ने जो इन्फ्लेशन है उसके रिस्क को लेकर कंसर्न्स डिस्कस किए हैं। एनर्जी प्राइसेस और डोमेस्टिक डिमांड जैसे फैक्टर्स पर भी नजर रखी जा रही है। आरबीए की नेक्स्ट शेड्यूल्ड मीटिंग जो है 29 सितंबर को है, इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया में डिस्कशन अभी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। तो भाई होम ओनर्स, रेंटर्स, बिजनेस ओनर्स की नजर भाई इकोनॉमी पर है, लेकिन मॉर्निंग शो में हम टेंशन नहीं लेंगे, भाई कॉफी लेंगे। आइए इसी के साथ कॉफी का सिप पीते हैं और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

0: इसके साथ AFL ग्रैंड फिनाले की बात करें तो ब्रिस्बेन लायंस और फ्रीमेंटल के बीच 2026 AFL ग्रैंड फिनाले को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर है। वही ब्रिस्बेन लायंस के जो मिडफील्डर है लेची नील को ट्रिब्यूनल डिसीजन के बाद वन मैच सस्पेंशन मिला है, जिसकी वजह से वो ग्रैंड फिनाले के लिए अनअवेलेबल है। भैया ब्रिस्बेन लायंस ने डिसीजन को लेकर अपील करने की प्रोसेस जो है आगे बढ़ाने की बात कही है और ब्रिस्बेन में AFL ग्रैंड फिनाले फीवर का मतलब फूटी कन्वर्सेशन एवरीवेयर। जी हाँ, ऑफिस में फूटी, कैफे में फूटी, फ्रेंड्स के ग्रुप चैट में फूटी। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी।

इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया स्पोर्ट्स की, तो इंडिया के लिए भी एशियन गेम्स से एक मेजर स्पोर्टिंग मोमेंट आया है। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में श्रीलंका को 147 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता है और ये एशियन गेम्स में इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल बना है। स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा की ओपनिंग जो है वो पार्टनरशिप ने भी मैच में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सो व्हाट अ मोमेंट फॉर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट। जी हाँ, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में सो मेरी ब्रिस्बेन फैमिली, आप घर से निकलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ड्राइव सेफली, रोड पर पेशेंस जरूर रखिएगा, और अगर आज का दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो भी जाए तो रिमेंबर डिफिकल्ट मोमेंट पूरा दिन नहीं होता है। मैं भी आपकी अपनी दोस्त और होस्ट आरजे शानी जैन और आप सभी सुन रहे थे रेडियो ब्रिस्बेन में प्रोग्राम चलाने का सफर। कल फिर इसी वक्त इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन एंड हैव अ ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी वंडरफुल Wednesday, this one, take care.

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेंगे ईरानी राष्ट्रपति, अमेरिका ने होटल से बाहर जाने पर लगाई रोक। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा गतिरोध एक बार फिर केंद्र में आ गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान जहां एक ओर यूएनजीए में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इस दौरान पेजिश्कियान पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। इस्लामाबाद में मास कैजुअलिटी का अलर्ट, इमरान खान की पार्टी के विरोध प्रदर्शन से पहले पाकिस्तान के अस्पतालों में छुट्टियां रद्द। इस्लामाबाद के अस्पतालों को कथित तौर पर एक संभावित मानवीय संकट और बड़े पैमाने पर हताहतों वाली घटना के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। ये आदेश जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द्वारा 27 सितंबर को नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले दिया गया है। ड्रॉप साइट द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार इस्लामाबाद के अस्पतालों को दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि सभी निर्धारित सर्जरी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया जाए और सर्जिकल विभागों को मरीजों की संभावित बढ़ती संख्या के लिए तैयार रखा जाए। व्हाइट हाउस में बने हेलीपैड का ट्रंप ने किया उद्घाटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बने अपने नए हेलीपैड का उद्घाटन किया। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से CNN पर प्रतिबंध के विरोध में अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क ने कवरेज से दूरी बना ली। जब CNN को निर्धारित कवरेज से रोका गया तो ABC, CBS, ABS और फॉक्स न्यूज ने मिलकर ट्रंप के हेलीपैड समारोह को न दिखाने का असाधारण फैसला किया। ट्रंप ने घोषणा की थी कि वो व्हाइट हाउस की कवरेज करने से CNN को रोक रहे हैं। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। विकसित भारत 2047 का रोड मैप तैयार, 23 सितंबर को 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक अस्थिरता और चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। इसे महसूस करते हुए सरकार अब 2047 के विकसित भारत के लिए अपने रोड मैप को नया आयाम देने की तैयारी में है। इसी क्रम में बुधवार और गुरुवार को मंत्रिपरिषद की 2 दिवसीय चिंतन बैठक होगी। माना जा रहा है कि इसमें 8 से 10 प्रेजेंटेशन होंगे और सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए जाएंगे कि उसके क्रियान्वयन में तेजी लाएं। मलेशिया के फ्री वीजा पर भारतीय उच्चायोग ने जारी की एडवाइजरी। मलेशिया की 30 दिन के फ्री वीजा और फ्री एंट्री की सुविधा को लेकर भारत ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। भारत ने नागरिकों से इस सुविधा के इस्तेमाल को नहीं करने और नौकरी का झूठा वादा करने वाले एजेंटों से सावधान रहने का संकेत दिया है। क्वालालंपुर में भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों को आगाह करते हुए कहा, काम की तलाश में वीजा फ्री सुविधा के तहत मलेशिया आने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। उसने चेतावनी दी कि कई लोगों को धोखेबाज एजेंट गुमराह कर रहे हैं जो देश में नौकरी दिलाने का वादा करते हैं। आइए अब जुड़ते हैं खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। जापान ने लड़ी समुराई वाली लड़ाई, टीम इंडिया को संघर्ष करते हुए मिली जीत। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने जापान के खिलाफ खेले गए पहले मैच में संघर्ष के साथ जीत हासिल की है। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस मैच में भारतीय बल्लेबाज रनों की बारिश करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। बारिश के कारण मैदान गीला था और इसी कारण 5 ओवर प्रतिपारी का मैच हुआ और जापान ने भी तगड़ी लड़ाई लड़ी, जिससे टीम इंडिया को सिर्फ 2 रनों से ही जीत मिली। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रेसवाणी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Oh, that was an older song. Hope you enjoyed it.
1: झलक दिखला जा. After a long time, after I had this song.
0: Yeah, I played it after a very long time. Used to be one of Amir's favorite songs when he was so much younger. When he was like what, 18 or something.
1: चलो दोस्तों, 8:20 हो गया है और आपको याद दिला दूं, भूलना मत, शताक्षी के साथ होंगे आप इस कार्यक्रम के बाद में. 11 बजे से संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम और फिर 3 बजे से आप रहेंगे निव्या के साथ.
0: निव्या के साथ.
1: आई वंडर व्हाट निव्या वुड हैव टुडे आफ्टर दैट स्पीच ट्रम्प गेव. I must tune in to listen to Trump bashing today. Oh my goodness. Okay.
0: Okay, I want to play an old song from the movie Gopi.
1: Yeah, let's go to some old song.
2: क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो?

0: भूल गए?
1: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के धमा देंगे प्रोग्राम।
0: हाँ।
1: ताली भी बज जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: लॉन्ग सॉन्ग.
1: यस, लॉन्ग सॉन्ग, वेरी लॉन्ग सॉन्ग. 8:30 बज गया है दोस्तों. रेडियो मिज़वानी आप सुन रहे हैं. और आगे बढ़ते हुए चलो एक गीत मैं बजाता हूँ.
0: okay.
1: उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगे.
0: हाहाहाहा

0: जी हाँ दोस्तों, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, सायरा बानो जोई मुखर्जी फिल्म शागिर्द 1967 मूवी का बहुत ही लोकप्रिय गीत अभी आपने सुना रफी साहब से। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। हाय एमी,
1: हाउ आर यू?
0: या
1: सॉरी, आई डिडंट इवन हैव माय माइक ऑन।
0: Okay, you playing something? If not, I can play something in the meantime.
1: Yeah, go for it. Yeah.

0: चीर कर इस दिल को कहो तो दिखा दूं मैं, क्या बात है, क्या लिरिक्स, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था ये। और शंकर जयकिशन के संगीत पर आपने सुना, और हजरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था, विजयंती माला, राजेंद्र कुमार जोनी वोका भी थे इसमें। और फिल्म कौन सा फिल्म था, फिल्म मूवी है सूरज, 1966 मूवी सूरज का गीत अभी आपने सुना दोस्तों। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान, मैं कहने जा रहा था आपकी अपनी परछाई। वाओ, दैट वुड बी ऑलराइट, रेडियो बिजवानी आपकी अपनी परछाई। ओके
1: Okay, what's it? 8:45.
0: Time is flying, eh?
1: Yeah, time is flying. Okay.
0: 8:45. Okay.

0: जी हाँ दोस्तों, फिल्म शहनाई का गीत 1964 मूवी विश्वजीत और राजश्री के लिए, कितनी जवां है जिंदगी। तो चले दोस्तों, हम आपसे विदा ले रहे हैं, आखिरी गीत है। अमिता, थैंक यू वेरी मच, होपफुली टुमारो,
1: एंड वी विल सी यू टुमारो।
0: ओके, नमस्ते एवरीबॉडी।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक रेडियो प्रस्थानी पर एक बार फिर से आप सताक्षी के साथ, और मेरे साथ अब आप सुनने जा रहे हैं अपनी सुबह का सबसे बेहतरीन शो। ये शो है आपके अपने ब्रेकफास्ट का शो, इट हैपेंस। बेहतरीन इसलिए मियां मिट्ठू हम अपने इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम इस शो में आपसे बात करते हैं आपकी जिंदगी की, आप जो पाना चाहते हैं उसकी और जो आपके लिए जरूरी है उसकी भी। और इसके साथ ही साथ हम इस शो में प्ले करते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉर्निंग नंबर्स। तो चलिए, जब इतना प्यारा इतना खास शो है तो भला देर किस बात की है। अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। के प्लस टू रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ, इट हैपेंस।

वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों आगे बढ़ना है, ढेर सारी बातें भी आपके साथ करनी है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे आज के उस विश के साथ, उस खास सेगमेंट के साथ जिसमें हम उन्हें विश करते हैं जिनके लिए आज का दिन खास है। सो जिनका आज है हैप्पी बर्थडे, उन सबको उनके बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जी हाँ, हम यही तो चाहते हैं कि आपकी सारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, आबाद रहे, और यही हमारी विश भी है आज आपके लिए, और आपके लिए हमारा गिफ्ट भी है। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज उनका जीवन साथी उन्हें मिला था। ये साथ जो है सात जन्मों का, ये आज के दिन ही जो है वो बंधा था। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आप यूं ही जिंदगी के कदमों से कदम मिलाकर चलते रहें और एक साथ चलते रहें। इसी विश के साथ अब हम विश करेंगे उन्हें भी जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और खास। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। यकीन मानिए आप जो भी चाहते हैं वो जरूर मुकम्मल होगा क्योंकि आपकी ख्वाहिश सच्ची और साफ दिल की है। आइए इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

अच्छा, कंटेंट क्रिएशन भी आजकल एक मेडिटेशन की तरह वर्क कर रहा है। जी हाँ, जिन लोगों को कंटेंट क्रिएशन का शौक है, यानी जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, देखा जाए तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश है। अब देखिए ना, वो ना तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ना स्ट्रेस में रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर रोज़ कंटेंट क्रिएट करते हैं और अपलोड भी कर देते हैं। देखिए, इस केस में ना आपके ऊपर और नीचे कोई नहीं होता, आप अपने प्रोड्यूसर भी खुद हैं, डायरेक्टर भी खुद हैं, एक्टर भी खुद हैं, एडिटर भी खुद हैं, है ना, और स्क्रिप्ट राइटर भी आप खुद ही हैं भाई। बिहाइंड द कैमरा और फ्रंट ऑफ द कैमरा आप ही को काम करना है। तो देखा जाए, जब सब कुछ आपके हाथ में है तो आपको ऐसा लगता है कि यार, जिंदगी का बैलेंस एक तरह से मेरे हाथ में आ गया है और कंटेंट क्रिएशन आपके लिए आसान हो जाता है। एक मेडिटेशन की तरह अगर कि मैं ये कह रही हूँ कि ये वर्क करता है, तो कुछ गलत नहीं है इसमें। सच में, जितने देर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपका पूरा ध्यान अपने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे रहता है। पहले उसमें अगर आप एक्ट कर रहे हैं तो उस पर, फिर जब आप उसकी एडिटिंग करते हैं तो उस पर, और उसके भी पहले जब आप उसके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं उस पर। सोचिए आप कितने इंगेज हो जाते हैं और बाकी सारी चीजें आपके दिमाग से, आपके जहन से निकल जाती हैं। सो यस, अगर नहीं शुरू किया है तो कुछ ना कुछ अपलोड करना या लिखना या बोलना शुरू कीजिए, ताकि आपके जहन से जो फालतू की बातें हैं वो निकल कर आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फ्रेश चीजें रह सकें, क्रिएटिव चीजें रह सकें और उनसे आपको बेनिफिट भी मिले। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए छापन रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

हमें जिंदगी में जरूरत होती है ऐसे लोगों की जो बोलें कि यार तू ठीक नहीं लग रही है, कॉल करूं क्या, तुझसे बात करूं क्या। बट ऑन द अदर हैंड हमारे हाथ ऐसे लोग लगते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार सो जाना, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, चिल कर। अरे यार, मतलब सोचने वाली बात है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा लाइफ में तब तो बंदा परेशान है ना। और उसे हमेशा ये चिल कर और सो जानी चाहिए, कभी कभी उसे ये चाहिए कि कोई उसे सुने, उससे बात करे, कोई ये दिखाए कि भैया हमें भी तुम्हारी परवाह है, हम भी तुम्हारी केयर करते हैं, और देखो अगर तुम परेशान हो तो हमें भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन नहीं, जिंदगी तो ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो कहेंगे यार तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें क्या ही जरूरत है, ये है वो है। और मतलब सोचिए ना कि मतलब कभी कभी इंसान को थोड़ा सा सॉफ्ट भी समझिए, हमेशा हार्ड समझने या दिखाने की जरूरत नहीं है। एक और ट्रैक मेरे साथ एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए ठाकुर साहब, सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 FM।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: देखिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं गानों की हैट्रिक लगाने के लिए। भाई लगाते होंगे हमारे क्रिकेटर्स चौवे और छक्के, हमारे लिए तो ये हैट्रिक ही काफी है। हमें यहाँ पर सुनने को मिलते हैं 3 गाने, वो भी बैक टू बैक। तो चलिए बिना देर किए गानों की हैट्रिक के पहले ट्रैक के साथ आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस मेरे साथ।

गानों की हैट्रिक। जी हाँ, गानों की हैट्रिक इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर, और गानों की हैट्रिक के इस लास्ट ट्रैक को एंजॉय कीजिए, और इसके उस पार होंगी ठापंस में आपके साथ एक बार फिर से ढेरों ढेर बातें।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a

हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं ना जो बहुत लंबे वक्त तक हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं, लेकिन वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप या आपकी लाइफ से कुछ लोग बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं, या आपने भी उन लोगों को छोड़ा होगा, कभी ऐसा हुआ होगा। ऐसा इसलिए नहीं होता कि सामने वाले में हमेशा ईगो है, बल्कि कई बार वो सामने वाले का बिहेवियर ऑब्जर्व कर लेता है, समझ जाता है कि यार यहाँ पर मुझे कितनी रिस्पेक्ट मिलनी है, या यहाँ पर जो है मुझे कितना सुना जाना है, या यहाँ पर मेरी कितनी वैल्यू होने वाली है। तो जब एक इंसान ना एक रिश्ते में अपनी वैल्यू को ऑब्जर्व कर लेता है, तो कई बार वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड होने के बाद भी आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि एक बंदा जो है वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा, आप जिस एटीट्यूड के साथ उस एटीट्यूड के साथ वो आपके साथ रहेगा, तो नहीं। कुछ लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से इतनी मोहब्बत होती है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं और अपने आप को उसमें टॉप पर रखते हैं, ठीक है जी। और ऐसे लोगों के नाम, क्योंकि मैं भाई ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत करती हूँ, ऐसे लोगों के नाम एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक अभी, और सुनते रहिए ट्रैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन पर, और इट हैपेंस है आपके साथ कई मॉर्निंग ट्रैक्स को हम इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जमाना बदला है और इस जमाने में किसी को इग्नोर करना भी एक नया तरीका ले चुका है। या कोई आपको मैसेज करे, आप उसे सीन करके छोड़ दीजिए, ऑनलाइन आइए लेकिन फिर भी जवाब मत दीजिए। जब सामने वाला आपसे पूछेगी क्यों भाई तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ये ऑनलाइन थे रिप्लाई नहीं किया, सिंपल सा जवाब कि भाई बिजी थे, ऑनलाइन होकर छूट गया होगा, हमने नहीं उसको डिस्कनेक्ट किया होगा या नहीं ध्यान गया, है ना, बात खत्म। और ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स पे जब आप इग्नोर करते हैं किसी को, तो सामने वाला धीरे धीरे करके ये समझ जाता है कि भाई आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। या आपने कई बार ये रियलाइज किया होगा कि आप पीछे पढ़ पढ़ के किसी से कि यार बात नहीं कर रहे हो या रिप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आपको समझ आता है कि यार ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसको शायद इस रिश्ते में अब रहना ही नहीं है, या इसको अब रिश्ते में मेरी जरूरत ही नहीं है, है ना। हाँ, तो कभी कभी कुछ ना कहना भी ये बता देता है कि अब रिश्ते की वैल्यू कम हो गई है। और आजकल के जमाने में जैसा कि मैंने कहा, बड़ा आसान है। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन, मेरे साथ ही सुनते रहिए इट हैपेंस, और सुनते रहिए आपके मॉर्निंग ट्रैक्स मेरे साथ।